हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948 की श्रावण माह की तिथि 3, तदनुसार दिनांक 25 जुलाई सन 2026। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
3: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि

0: भी 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उसका अंत नहीं होता। वस्त्र सत्य भाषण व सत्य पालन के अमित फल होते हैं। हमारा जीवन भी एक वृक्ष है। इस वृक्ष में यदि सच्चरित्रता रूपी फूल न लगा हो तो निश्चय जानिए इसमें महानता रूपी फल कदापि न लगेगा। इस एक फूल की सुगंध से संपूर्ण जीवन सुरभित हो उठता है और आत्मा दिव्य प्रकाश से चमक उठती है। कबीरदास ने ठीक ही कहा था, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। गांधी जी की सत्यनिष्ठा इस बात से साफ जाहिर है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तथा भारत को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया उसे सत्याग्रह का नाम दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन से एक बार किसी ने पूछा, महानता का सर्वप्रधान लक्षण क्या है? उन्होंने झट कहा, सच्चरित्रता। इतिहास लिंकन के इस उत्तर की पुष्टि करता है। ऐसी सच्चरित्रता जिसे पाकर इंसान भगवान बन जाता है में कई गुणों का समावेश रहता है। सत्यवादिता सच्चरित्रता का पहला लक्षण है। सच्चरित्र व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भी असत्य को स्थान नहीं देते, इसी कारण वे निडर और अजेय होते हैं। भले ही वह शरीर से क्षीण हो या अन्य भौतिक शक्तियां उसके पास न हो, पर आत्मविश्वास का कवच धारण कर और स्वाभिमान की ढाल लेकर जब वह आगे बढ़ता है तो पहाड़ उसके रास्ते से अलग हट जाते हैं, समुद्र भी उसके पथ का बाधक नहीं बनता, आसमान उस पर फूलों की वर्षा करता है, विपत्तियां उसे देखकर सहम जाती हैं, विजयश्री उसके गले में वरमाला डालती है। गांधी जी देखने में एक साधारण

0: व्यक्ति थे। शारीरिक बल अत्यंत साधारण और पढ़ने लिखने में भी साधारण। हाँ, सत्य के प्रति विशेष अनुराग था तथा इसी शक्ति के आधार पर उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। बालक गांधी ने जिस धरती पर जन्म लिया था वह गुलामी के बंधनों में जकड़ी हुई थी, पर उस बालक ने बड़े होकर अपनी सच्चरित्रता व चरित्र बल के सहारे उस शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत, जिसके शासन में कहते हैं कभी सूर्यास्त न होता था, को भी अपने सत्याग्रह के सामने झुका दिया। सत्य में कितना बल है, इसका इससे सुंदर प्रमाण और क्या हो सकता है। जब सच्चरित्रता की आभा से व्यक्ति का व्यक्तित्व दीप्त हो उठता है तो वह स्वार्थ के धरातल से ऊपर उठकर स्वयं को लोक के साथ एकाकार कर देता है। तब लोक का सुख दुख उसका सुख दुख बन जाता है। लोक कल्याण के लिए ही वह जीता है। गांधी जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र व लोक कल्याण में लगा दिया था तथा एक कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें उनकी इस सेवा से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता की संज्ञा से विभूषित किया। निसंदेह वे राष्ट्रपिता थे। एक पिता जिस तरह अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व नौछावर कर देता है, उसी तरह गांधी जी ने भी राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना जीवन होम कर दिया। सत्य ही उनके लिए परमेश्वर था और एक सच्चरित्र जीवन वहां तक पहुंचने का साधन। अपनी कर्तव्य निष्ठा व सत्य निष्ठा के कारण जो साधारण मानव से महादेव बने थे, वे ही थे मोहनदास करमचंद गांधी। महाकवि दिनकर ने उनकी महानता को इन शब्दों में प्रणाम किया। तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग, भूनभ का महासेतु।
1: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जोतों वाली माँ, छत्रों वाली माँ वैष्णो देवी की छत्र छाया में आए सवारी भक्तों के कदम जैसे जैसे माँ की ओर बढ़ते हैं, महिमा वैष्णो देवी की उनके दुख हर सुखों से उनकी झोलियां भर देती हैं। मुक्तिदायिनी माँ के द्वार पर हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। वैष्णो माता का जयकारा जीवन में नया उजियारा लाता है।

0: इसी भजन के साथ आज का वंदना कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है श्री रामचरितमानस की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 86 86

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसुरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी हम दे दें आपको। सुबह 7 बजे सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। प्रसंग सामाजिक वार्ता का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। 7:30 पर होगा सुगम संगीत। और सुबह 8 बजे आप सुनते हैं समाचार प्रभात। और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 8:45 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हेलो हजारीबाग, हमारा दैनिक कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज सुबह 10 बजे। पुनः 11 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5:02 पर होगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। 5:32 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। शाम 6:02 पर होगा श्रमिक भाइयों के लिए कार्यक्रम मेहनत कश। 6:30 पर फिल्म संगीत। और शाम 7 बजे सुनते हैं प्रादेशिक समाचार एवं 7:10 पर जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। और ऑल टाइम हिट्स आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। 7:45 पर होगा नव चेतना। 8:15 पर रात्रि आप सुनेंगे श्रोता अपनी फरमाइशी गीत आपकी चाहत। 8:45 पर समाचार संध्या। और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर होगा आज के फनकार। रात्रि 11 बजे सुनते हैं हिंदी में समाचार। और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो हमारी सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात्रि 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: एतत् नीट प्रकरणे सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्र प्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेल सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रूमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रूमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वति राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम प्रसंग। आज का विषय है शिक्षा सबके लिए। वार्ताकार हैं डॉक्टर साबिर हुसैन।
1: शिक्षा समाज के प्रगति और विकास का मूल अंग है। समाज, राज्य अथवा देश तभी प्रगति और विकसित हो सकता है जबकि उसके लोग शिक्षित हों। शिक्षित होने से ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। नेशनल लेवल पर जैन समाज में साक्षरता दर 94% है, क्रिश्चियन समाज में 74.3%, बुद्धिस्ट समाज में 71.8%, सिख में 67.5%, हिंदू में 63.6% तथा मुस्लिम में साक्षरता दर 57.3% है। मुस्लिम में केवल 2.76% स्नातक या उससे ऊपर स्तर तक शिक्षित हैं तथा केवल 8.5% सरकारी नौकरियों में हैं। 48.1% मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित हैं। करीब 31% मुस्लिम गरीब रेखा के नीचे हैं। अशिक्षा के कारण कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं जिससे फर्टिलिटी रेट अधिक तथा चाइल्ड मोर्टालिटी रेट अधिक होने के कारण स्वास्थ्य खराब होता जाता है। मुस्लिम समाज में जागरूकता की कमी है। महिला शिक्षक की कमी के कारण भी

0: महिला साक्षरता दर कम है। झारखंड राज्य में जहां 24 जिले 260 या उससे अधिक प्रखंड हैं तथा 32,615 राजस्व ग्राम हैं, झारखंड में उसी तरह 40 से अधिक मुस्लिम जातियां निवास करती हैं। कुछ जातियों को छोड़कर अधिकतर मुस्लिम जातियों का साक्षरता दर 20 से 30 प्रतिशत या उससे कम है, जो आदिम जातियों के जैसा है। आदिम जनजातियों में झारखंड में देखें तो असुर, बिरजिया, बिरहोर, परहिया, कोरवा, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सवर 8 आदिम जनजातियां हैं। मुस्लिम जातियों में जबकि साक्षरता दर जिनका कम है उन्हें डफाली, चोक, कसाब, धुनिया, पमरिया, भटियारा, भाट, चूड़ीहार, लाल बेगिया, रंगरेज, साई, मदारी, मोर्चिकार, मिरियासिन, हलालखोर, नालकंद, सकेलगर, बलखोर, मुकरी, चीख, नाई, दर्जी इत्यादि हैं। इतना ही नहीं, कुछ जातियों के बारे में हमें यह पता नहीं है कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम, जैसे जादूपटिया, कागजी, कोस्ता, जोगी, तमोली, परथा, रिसिया, कुल्हैया इत्यादि। इन जातियों पर शोध की जरूरत है। हर जिला में एक माइनॉरिटी सेल बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय में जागरूकता लाने, हर गांव टोला में इनके लिए स्कूल तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाए, तभी इनका प्रगति तथा विकास संभव हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी भाषा, अपनी लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का पूरा अधिकार है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 59% है, जबकि इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं की साक्षरता दर केवल 49.4% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ऐसे 10 राज्यों के 88 जिले को चिन्हित किया गया है जहां पर अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर अत्यंत निम्न है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 28 जिले ऐसे हैं जहां इस समाज के खासकर महिलाओं की साक्षरता दर 35% या इससे कम है। इसका कारण यह है कि इनकी एक बड़ी आबादी शिक्षा से लगातार महरूम रहा है तथा बच्चों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। झारखंड राज्य में जनजातियों में ड्रॉप आउट का मुख्य वजह प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षक नहीं समझ पाते और शिक्षक की भाषा बच्चे नहीं समझ पाते। जैसे मुंडारी भाषा जानने वाले बच्चों की भाषा हिंदी भाषा जानने वाले शिक्षक नहीं समझ पाते हैं। अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीनता भी एक मुख्य कारण है। यह समस्या बहुत हद तक झारखंड सरकार द्वारा दूर किया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार भारत वर्ष में 1635 जनजातीय भाषाएं प्रचलित हैं, जिसमें से 197 भाषाओं को संकटग्रस्त भाषा घोषित किया गया है क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पर हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। आने वाले समय में शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्कूली शिक्षा में से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास की नींव प्रारंभिक बाल्य अवस्था से ही किया जाएगा। माना जाता है कि बच्चों का मस्तिष्क का मैक्सिमम विकास 6 वर्ष से पहले हो जाता है। नई शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम का ढांचा 5+3+3+4 का होगा। शिक्षा अब किसी विशेष तबके या वर्ग के लिए ना होकर सार्वभौमिक होगा, जहां सभी लोगों के लिए समान अवसर होंगे। 100% नामांकन होगा। प्रारंभिक कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता एवं बच्चों के समग्र विकास के प्रति उत्तरदायी होना नई शिक्षा नीति के प्रावधान है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता शिक्षा सबके लिए। वार्ताकार थे डॉक्टर साबिर हुसैन। इसी के साथ प्रसंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है सुगम संगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
7: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया,

0: सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
2: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल हुए।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
3: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी, ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंटी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालय

0: विद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
1: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, एथिक्स and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
0: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: The recent increase in flows,
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
2: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी।

0: एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है, सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है, केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the Higher Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
3: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा हमारे

0: In his editorial piece, Shine On, Dick Parry writes that the brilliantly crafted saxophone lines by Dick Parry, who passed away at 83 this week, were rarely the first thing one noticed in a Pink Floyd song. But imagine the song stripped off his saxophone, and the incompleteness will reveal what he brought to them. In his aching solo on Shine On, You Crazy Diamond, written in memory of Syd Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes FIDE interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से सुनिए प्रादेशिक समाचार, लेकिन पहले एक संदेश।
3: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा वाले कड़े मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। अगले सप्ताह संसद में होगा पेश। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा अनियमितता की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुल गिरफ्तारियों की संख्या हुई 8। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर इलाके में आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है घुरती रथ मेला। सुरक्षा के लिए पुलिस का विशेष गश्ती दल सक्रिय। राज्य में मानसून की बेरुखी से अब तक 28% कम बारिश दर्ज। विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा पलामू में खरीफ का रकबा घटकर महज 1/4 रहने का मामला। और रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आज। बालिका वर्ग में रांची और बालक वर्ग में लोहरदगा की टीमें अंतिम 4 में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो को मिले जबरदस्त जन समर्थन और युवाओं के रचनात्मक सुझावों के लिए देश के युवाओं का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं को धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया कि इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जो इसके रिलीज होने के पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला एक नया रिकॉर्ड बन गया है।
6: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा।

0: हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किसी भी हाल में अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने विपक्ष की मांगों को राजनीति से प्रेरित बताया।
2: धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप नहीं है, पॉलिटिकल स्टंटबाजी अलग है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी से बड़ा कोई उठता भी नहीं है। उस उनके निर्देश पर सब चीजें चल रही है। आज किस बात का इस्तीफा? वो क्या चुनाव जिताए थे कांग्रेस के बलबूते पर? धर्मेंद्र प्रधान चुनाव जीते थे क्या?
1: झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID ने परीक्षा संचालक एजेंसी TDPL के 3 और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 8 हो गई है। जांच टीम ने रांची के 2 होटलों में छापेमारी कर डिजिटल उपकरणों को जब्त किया है और परीक्षा परिणामों में संभावित हेरफेर तथा एजेंसी को काम सौंपने की प्रक्रिया की फॉरेंसिक जाँच की जा रही है। DGP तदासा मिश्रा के निर्देश पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में बढ़ते अपराध और गैंगस्टरों पर काबू पाने के लिए DSP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। यह टीम कुख्यात अपराधियों का डेटाबेस तैयार कर उनके नेटवर्क, फंडिंग और सहयोगियों पर कड़ी नजर रखेगी और जिला पुलिस के साथ मिलकर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र में CISF ने विशेष अभियान चलाकर तिवारी बस्ती के पास से 6 हाईवा में लदा 78 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया है। गृह मंत्रालय के जीरो कोल लीकेज मिशन और MMDR अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद जब्त कोयले को BCCL प्रबंधन को सौंपकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के माई भारत स्वयं सेवक महेश कुमार महतो को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूथ एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित हिंदुस्तान यूथ आइकन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। स्वयं 36 बार रक्तदान करने और हजारों सामाजिक अभियानों का नेतृत्व करने वाले महेश इस राष्ट्रीय उपलब्धि से बेहद उत्साहित हैं।
3: सोशल वर्क के जरिए होता है कि अपना प्रखंड को विकास करने का काम रहता है। इसमें विभिन्न तरह के एक्टिविटीज मैं भारत और NSS में होते रहते हैं। इंटरव्यू लिया जाता है कि पहले से कभी सोशल वर्क किए हुए हैं कि नहीं, आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा है। को एक साल यूथ वॉलंटियर के रूप में काम करना पड़ता है सोसाइटी में, को यूथ को कोऑर्डिनेटर करना है, तब कहीं ना कहीं NSS मैं भारत में आपका सिलेक्शन किया जाता है।
1: रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज घूर्ति रथ यात्रा के मुख्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही प्रसिद्ध मेले का आयोजन हो रहा है। इस पावन अवसर पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए धुरवा थाना क्षेत्र में पुलिस बल की विशेष गश्ती और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है। श्रावणी मेले को लेकर जसीडीह स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए RPF IG AN सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जहां संदिग्धों की तुरंत पहचान के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। IG ने स्टेशन पर यात्रियों के लिए बनाए जा रहे होल्डिंग एरिया, कंट्रोल रूम और भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया तथा बताया कि मेला विशेष ट्रेनों और नियमित गाड़ियों में RPF की विशेष गश्त तैनात रहेगी। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जन वार्तालाप कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुखदेव नगर और पहाड़ी मंदिर क्षेत्र के स्थानीय प्रबुद्ध जनों और पार्षदों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। SSP ने थाना प्रभारियों को स्कूल कॉलेजों के पास छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी और नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी सावन माह में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की

0: भारी भीड़ को देखते हुए सुगम दर्शन, बैरिकेडिंग और पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था के लिए पूजा समिति से महत्वपूर्ण सुझाव मांगे हैं। राज्य में कम बारिश से खरीफ फसलों पर संकट गहरा गया है। विशेषकर पलामू जिले में 1,35,000 हेक्टेयर के मुकाबले महज 30,000 हेक्टेयर में ही खेती हो सकी है। राज्य के इस गंभीर कृषि संकट को लेकर जनप्रतिनिधियों ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विशेष चर्चा की मांग उठाने की घोषणा की है।
1: बस्तियों के अंदर अगर बारिश बढ़िया नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पलामू अकाल सुखाड़ के ओर जा रही है, और जब अकाल सुखाड़ पड़ेगा तो पलामू कहीं ना कहीं हकार मचेगा। पलामू सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बारिश का अवसर कम हुआ है, उसमें विचार करने की जरूरत है। सत्र के माध्यम से सरकार में, सरकार तक भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य हुई है, जो भी प्रदेश में जो हो रहा है, उन सब विचारों को हम लोग सरकार तक पहुँचाने के काम करेंगे।
0: रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता के निर्णायक दौर में बालिका वर्ग से रांची, गिरिडीह, सिमडेगा और साहिबगंज तथा बालक वर्ग से लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़ और गिरिडीह की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज प्रतियोगिता का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पेपर लीक संशोधन विधेयक कैबिनेट से मंजूर होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सीजेपी का दावा, नीट पेपर लीक पर जान दे चुके बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ देगा केंद्र। हिंदुस्तान ने लिखा है, खूंटी के 2 श्रमिकों समेत 3 के शव सिक्किम से लाए गए। प्रभात खबर के शब्द हैं, डूरंड कप के लिए रांची तैयार, मुकाबले कल से। दैनिक जागरण लिखता है, झारखंड में नहीं बढ़ेगी एसआईआर की अवधि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा वाले कड़े मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। अगले सप्ताह संसद में होगा पेश। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा अनियमितता की जाँच कर रही सीआईडी की टीम ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुल गिरफ्तारियों की संख्या हुई 8। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर इलाके में आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है घुरती रथ मेला। सुरक्षा के लिए पुलिस का विशेष गश्ती दल सक्रिय। राज्य में मानसून की बेरुखी से अब तक 28% कम बारिश दर्ज। विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा पलामू में खरीफ का रकबा, घटकर महज 1/4 रहने का मामला। और रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आज। बालिका वर्ग में रांची और बालक वर्ग में लोहरदगा की टीमें अंतिम 4 में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से

करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: आयुष्मान खुराना को आप सुन रहे थे। इस गीत में विकी डोनर फिल्म का नाम था। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: मोहित चौहान को अभी आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म से, इरशाद कामिल ने इसे लिखा और A.R. रहमान का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूं कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
3: जी।
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
3: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक, दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से

0: दादा बेटियों को प्यार मिलता था, तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है जी। फिर हमने मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरी फिजिकल टेस्ट हुए थे, क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहां पे मैं सेकंड आई थी। गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक गवर्नमेंट
1: होती है ना
0: जी, डिसिप्लिन एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी।
1: अच्छा जी, 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
0: टू मच, अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। अच्छा। इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ल्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापिस जा रही है। मैंने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी, उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको
1: एक साल। आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना?
0: जी, मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
1: आपने काफी गोल बचाए
0: जी। तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे, उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है, तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई एकेडमी गई, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गाँव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया, तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहां नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे, सविता वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने नौ नौ गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस

0: फील होता है मुझे. मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ. तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी. और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था. और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं
1: क्वालिफाई
0: किया है.
1: नहीं किया.
0: 1980 में बुलाया था, बट वो एक इन्विटेशन था, है ना. टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है. तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है. और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बींग ए फर्स्ट गोलकीपर. प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है. और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए. तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई, अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से. तो पापा ने बोला, बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा. उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है. तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली. तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है, ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं. बस मैम, बहुत गोलकीपर की, नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं. गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं. हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है, और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है. तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की, और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा. उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है, और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी, यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया. और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है. जैसे ही मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है, तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए. मैंने पापा को बोला, पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे. अच्छा. मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे, वो जरूर ये चीज को मेंशन करें. अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था. तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था. और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं. तो कोई भी उस टाइम पे, उनको एक था कि शायद
1: तो
0: हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा. हमें भी, हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था. तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है. और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले. और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे. तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता.
1: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है. सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है. तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए. तो ऑफकोर्स कैप्टन इज है,
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है. अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं. इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ. और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है. और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है, तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है.
1: ज्यादा पसंद करती हैं. लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ

0: कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आपके प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था करना होता था तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी ट्रांसपोर्ट की, बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे दो सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहां पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की, लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहां। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा,
0: बहुत
1: जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
0: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है।
0: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया की से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजिशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर की हटकर तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप

0: पे उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: आज का चित्रलोक प्रोग्राम यही संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

एक ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती संगीतकार जी एस कोहली की।

0: सबको।
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
2: कुछ समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार

के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है।

जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोह

नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है। कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

साठ के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे। कभी हमें

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

दोस्तों, आज है 25 जुलाई। हर वर्ष 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को डूबने से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मनाया जाता है। हर वर्ष दुनिया भर में लाखों लोग पानी में डूबने की घटनाओं का सामना करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या बच्चों की होती है। सही जानकारी और सावधानी से इन दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसका उद्देश्य डूबने से होने वाली मौतों और दुर्घटनाओं को कम करना है, लोगों को जल सुरक्षा के नियमों की जानकारी देना है, बच्चों और युवाओं को तैराकी तथा जीवन रक्षक कौशल सीखने के लिए प्रेरित करना है, नदियों, तालाबों, झीलों और स्विमिंग पूलों के आसपास सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारों, विद्यालयों और समाज को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना होगा। इस दिवस का महत्व यह है कि यह मानव जीवन की सुरक्षा का संदेश देता है। बच्चों और परिवारों में जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। तैराकी और प्राथमिक उपचार जैसे जीवन रक्षक कौशल सीखने के लिए प्रेरित करता है। सुरक्षित जल पर्यटन और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देता है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से डूबने की घटनाओं को कम करने में सहायता करता है।

0: दोस्तों, सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और आशा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब हम समस्याओं को डर या निराशा की जगह सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं, तब सफलता की राह आसान हो जाती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हार नहीं मानता, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर नए समाधान खोजता है। यही सोच उसे आत्मविश्वासी, धैर्यवान और सफल बनाती है। दोस्तों, इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उनकी सफलता हमें सिखाती है कि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। अतः हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सकारात्मक सोच न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है, बल्कि कठिनाइयों को सफलता की सीढ़ी में बदलने की शक्ति भी देती है। यही जीवन में आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी मार्ग है।
1: हर चेहरा यहाँ चांद।

दोस्तों आइए जानते हैं आज के इतिहास को। यह दिन विज्ञान, लोकतंत्र और विश्व इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। विशेष रूप से पहली टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म ने चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति की शुरुआत की। सन 1992

में भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सन 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। सन 2012 में प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

दोस्तों, बड़का गांव की नया टाड़ गांव में तसर सिल्क बुनाई हथकरघा प्रशिक्षण का उद्घाटन बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में रेशम वस्त्र विभाग दिल्ली के अधिकारी, खादी बोर्ड सचिव अमरदीप सिन्हा, सुपरवाइजर शाह मोहम्मद उपस्थित हुए। मौके पर विधायक रोशन लाल चौधरी ने महिलाओं से कहा कि आप मेहनत करें, स्वरोजगार से जुड़ें, अपना परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करें, आत्मनिर्भर बनें। छात्राओं को कानूनी प्रावधानों व अधिकारों की जानकारी 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता अभियान के तहत शिविर में दी गई। परिसर में लगी प्रदर्शनी, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इस प्रकार हजारीबाग का 9 दिवसीय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। हजारीबाग झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में न्यू स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2026 का शुक्रवार को समापन हो गया।

तीन वर्गों में खेले गए मुकाबलों में चुरचू ने अंडर 17 बालक और अंडर 15 बालक वर्ग का खिताब जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि अंडर 17 बालिका वर्ग में RN+2 विद्यालय पद्मा की टीम चैंपियन बनी।

आइए जानते हैं आज की मौसम का हाल। आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और अधिकतम 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

दोस्तों आइए जानते हैं अंत में आज का विचार। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनसे सीखते हैं।

0: दोस्तों इसी गाने के साथ हेलो हजारीबाग कार्यक्रम से ही ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: Nine, eight, seven, six,

हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें आपने सुनी बुढ़ा मिल गया फिल्म के इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, और अब आपको कारवां फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रपट।

0: कारमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। और आपको ये भी बताते चलें कि आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे से फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अभी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान। और मैटिनी शो प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बातें की थी जल है तो कल है, सुभजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, और उन्होंने बीते हफ्ते बताया था कि कैसे जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने शुरू किया था वृक्षारोपण से, और तब उन्हें समझ में आया कि पेड़ तो तभी जिंदा रह सकते हैं जब पानी उनको जरूरत भर का मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं
1: जी
2: वो नेचर लवर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड है, वो बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, जो होते हैं कर्म योगी हैं सब
1: जी।
2: उनके साथ मिलके जिस हिसाब से रिस्पांस आता है, जिस हिसाब से कॉल्स आते हैं, पिछले हफ्ते जब बात हुई कई लोगों ने मुझे मेल किया है, इनफैक्ट मेरे इनबॉक्स लगभग भरने वाला था
1: जी जी।
2: बहुत अच्छा लगा इस बात
1: बिल्कुल, क्योंकि विविध भारती को पूरे देश में और बल्कि दुनिया के तमाम देशों में लोग सुनते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने तई बदलाव करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने बातें की थी तो आपने जल तारा के बारे में बताया था। मैं ये जो बातचीत है इसको गांव की दिशा में मोड़ना चाहता हूं।
2: बिल्कुल,
1: गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसका जमीन पर घर है और गांव में कुछ दूर पर उसके खेत हैं, या तो उसके खेत हैं या किसी और के खेत हैं जहां वो काम करता है, ऐसे लोग जो विविध भारती सुन रहे हैं उनको वाटर कंजर्वेशन या जल संचय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं अपने तई, ये बताइए।
2: बिल्कुल जी, इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि किसानों का विषय आपने लिया है, क्योंकि जो मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं ज्यादातर किसान है, उसमें मैं तो बोलूंगा 100 में से 80 किसान भाई बहन है जिनका मेल आ रहा है, एंड सब पानी से परेशान है
1: जी।
2: क्यों? कि उन लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे पास कम से कम 10 महीना पानी होता था, आज हमारे पास 8 महीना पानी है, बाकी हम लोग 4 महीना खाली बैठे रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें, खर्चा नहीं पूरा होता, इसलिए शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है। एंड आजकल के न्यू जनरेशन अवॉइड कर रहे हैं खेती करना, क्योंकि ये पानी की कमी है, इसलिए वो हमें ये बोलने, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कुछ बताइए हमारे पास 12 महीना पानी हो, ताकि हम 12 महीना काम करेंगे। एंड बात सही है, क्योंकि अगर हम 150 करोड़ आबादी है हमारे देश का, और इनको अगर हमें खाना खिलाना है तो हमारे किसान तो 12 महीना काम करना ही पड़ेगा ना उनको। अगर वो बोलेंगे कि 6 महीना पानी नहीं है, 4 महीना पानी नहीं, हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एंड थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक लिया
1: जी।
2: एंड और भी बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट यस, किसानों को पानी ज्यादातर जरूरत पड़ता है उनका खेती के लिए। एंड खेती में पानी उपयुक्त मिले, क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए, पानी का गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को माइंड में रखते हुए स्पेशल खेत में जल संचय करने का थोड़ा डिफरेंट विधि है, लेकिन है यही सिस्टम। हमें शोष खड्डा बनाना है, हमें परकुलेशन पिट बनाना है, जल तारा बनाना है, बट उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। फ्री तरीका है, इसमें उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत है। देश भर में आज भी जो खेती हो रहा है, हम लोग बोरवेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर,
1: इस वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है
2: जी। देखिए, एक है जब बारिश हो रही है उस समय हम लोग ऐसी ऐसी चीजें ग्रो करते हैं, जैसे चावल है, शुगर केन है, कॉटन है, कपास की खेती बहुत होती है, गेहूं की भी खेती होती है। जब पानी है तब हम लोग ये खेती कर लेते हैं, जब पानी खत्म हो जाता है तो हम लोग सब्जियों पे आ जाते हैं, हरी सब्जियों पे आ जाते हैं। तो इसलिए पहला तो हमें ऐसी चीजों को ग्रो करना है जिसमें पानी की कम से कम जरूरत पड़े, या जब पानी बहुत ज्यादा है, आज भी हमारा 70% पानी बह के समुन्द्र में और नदी में चला जा रहा है
1: जी।
2: तो बारिश के समय जिन सब्जियों में और जिन चीजों में ज्यादा पानी लगता है तो हमें उस समय ग्रो करना है, क्योंकि पानी बहुत होता है। जैसे ही पानी कम होने लगता है हमारा पूरा फोकस चला जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि 6 महीना सोच लीजिए आपने बारिश का पानी खींच लिया, बाकी का 6 महीना हमें अगर काम करना है तो बहुत ज्यादा हमारे किसान जमीन से पानी निकालने लगते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है सब्जियों का, लेकिन जमीन का पानी खत्म हो जा रहा है।
1: ये जो 70% पानी चला जा रहा है समुद्र में, इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या एक आम आदमी इसे बचा सकता है?
2: बस वही सोच है
1: जी।
2: यहाँ हम जब एक किसान की बात कर रहे हैं या किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं या किसान को माइंड में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, खेत का पानी खेत में रहना जरूरी है
1: जी।
2: एक तो हम लोग मेड़ बनाते हैं खेत में ताकि पानी रोक के रख सकें, दूसरा जब खेत में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बोरवेल सूख चुका है, बोरवेल में पानी नहीं है, तो वापस डालना भी जरूरी है। ये तो वही बात होगी, जमीन के अंदर एक पानी को आप अगर आप मान के चलिए, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, हजारों साल लगे हैं पैसा जमा करने में, मे भी आपके दादाजी पर दादाजी ने पैसा जमा किया था और अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वही हुआ है
1: पानी के साथ भी ऐसे ही है।
2: बस तो पानी खत्म हो चुका है तो अब उसको हम लोग दोबारा वापस डालना जरूरी है। मैं सबको यही, ये जो जल संचय और जन भागीदारी का ही प्रेरणा है कि जिसमें हमारी कोशिश कहते हैं हम लोग जल तारा ही कहते हैं, जिसमें वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, 15 फुट बाय 15 फुट और 2.5 फुट गहरा एक छोटा सा जल कुंड बनाना है ताकि बारिश का पानी आपके बोरवेल का जो पाइप है, बोरिंग का जो पाइप है, उसके बगल में जमा रहे। एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बोलूंगा, जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि जब भी हम बोरवेल खोदते हैं 6 इंच का पाइप अगर जमीन में जा रहा है तो 8 इंच की खुदाई होती है, जो मशीन होता है ना उसका मुंह बड़ा होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है वो तो ग्राइंड हो चुका है, वो तो पाउडर बन चुका है। अब अगर आप बोरवेल के आसपास पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का तो धीरे धीरे नॉन स्टॉप जमीन में पानी जाता रहेगा,
1: क्योंकि वो पिट जो है वो बड़ा बना है।
2: बड़ा बना हुआ है। बोरवेल क्या होता है, 200, 300, 400, 1000 फीट नीचे से पानी निकाल रहा है, नीचे पत्थर है, पत्थरों के बीच में गैप है, उसको एक्वाफर कहते हैं, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। जिस गैप से हमने पानी निकाला है, और बोरवेल का पाइप मतलब एक स्ट्रॉ मान के चलिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी स्ट्रॉ को यूज करके अगर हम पानी वापस डाल दें तो हमारे पास पानी दोबारा भर जाएगा कम से कम लागत में, और कम से कम लागत के आपको सिर्फ श्रमदान करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
1: अच्छा, कोई किसान या कोई गांव वाला अपने घर में, खेत में या अपने आंगन में जल संचय की कोई विधा बनाना चाहता है, कोई सिस्टम बनाना चाहता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा?
2: बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये
1: जी।
2: सर सबसे पहला जरूरी है, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि पानी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है
1: जी।
2: अगर एक पानी को आप संचय कर रहे हैं कि खेत में इस्तेमाल करना है और खेत का पानी है, तो याद रखिएगा खेत में हमने पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, टॉप सॉइल का पानी है, तो वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डिफ्रेंशिएशन हम मेंटेन रखें। जिस बोरवेल में आपने खेत का पानी डाला है तो 1 किलोमीटर दूर भी अगर आप उस पानी को निकालेंगे तो वो जहरीला हो सकता है, आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए घर में जो आप पानी जमा कर रहे हैं वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ होना जरूरी है। छत का पानी आप उसमें डाइवर्ट करवाइए, छत का पानी साफ होता है, पहले बारिश का पानी बह जाने दीजिए, फिर छत एकदम साफ हो जाता है, उस पानी को आप बोरवेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कीजिए। एक दो टेक्निक है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज। तो छत का पानी बहुत साफ होता है, उसको आप बोरवेल के अंदर डालिए, साफ रहेगा, आप पी सकते हैं। खेत का पानी खेत में इस्तेमाल करेंगे उसको पीने में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। एंड जल संचय उतना कीजिए जितनी आपकी जरूरत। बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है, कितना बारिश हो रहा है, कितने समय के लिए बारिश हो रहा है, आपको बता देगा कि कितना आपके पास छत है, उस हिसाब से कितना पानी आप कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप एक टंकी बना के सेव कीजिए या परमानेंटली भूजल ग्राउंड वाटर में उसको जमीन में समाने दीजिए, जितना सोख हो जाएगा आप, जैसे कि मैं कह रहा हूं उसमें इवेपोरेशन नहीं है, निकाल के इस्तेमाल करते रहिए, 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे वो जमीन के अंदर मिलेगा। बाकी अगर आप खेत है, आपको पानी ज्यादा चाहिए, तो आपको सिस्टम ज्यादा बनाना पड़ेगा। साइंस ये कहता है हर एकड़ में एक जल संचय होना चाहिए, हर एकड़ में एक बोरवेल मिल जाता है। आजकल तो बोरवेल इतना ज्यादा लोगों ने बना दिया है, बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे देश में। एंड बोरवेल भी 4 वैरायटी के होते हैं, ये लोग आइडेंटिफाई अक्सर भूल जाते हैं ये चीज। एक होता है फेल्ड बोरवेल, हमने एक जगह ड्रिल मशीन से 300, 400, 500 फीट खड्डा किया और पानी मिला ही नहीं, हम तो भूल ही जाते हैं कि ये भी तो बोरवेल है,
1: और उसके बाद उसको छोड़ दिया है।
2: छोड़ दिया, आपने 1,00,000 रुपए खर्चा कर दिया एक खड्डा बनाने में और उसको छोड़ दिया। इसको आप जलतारा बना दीजिए, इसके ऊपर पानी कलेक्ट कीजिए, पानी जाने लगेगा, बहुत सिंपल। सेकंड, डेड बोरवेल एक होता है
1: जहां का पानी सूख चुका है,
2: जो पहले आता था, पिछले 5 साल से वहां पानी ही नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं पानी आता था, अभी नहीं आ रहा है, मतलब पानी डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा।
1: यस,
2: तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, डेड बोरवेल को अलाइव कर देना। मुर्दा को हम लोग जान डाल सकते हैं,
1: जी जी,
2: वहां पे भी आप जलतारा लगा दीजिए। फिर मैं आ जाता हूँ ड्राई बोरवेल, मतलब पिछले साल यहाँ पे पानी था, आज पानी नहीं है।
1: इसका क्या मतलब है?
2: मतलब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो गया।
1: डेड बोरवेल में भी तो ग्राउंड टेबल वाटर,
2: डेड बोरवेल आना बंद ही हो गया है 5 सालों से। 5 साल का रिकॉर्ड बताता है पानी ही नहीं है। बट ये है ड्राई बोरवेल।

0: जो पिछले साल पानी था आज नहीं है, ये फ्रेश फ्रेश अभी अभी मरा है ये.
1: तो इसको जिंदा जल्दी किया
0: तुरंत इस प्रायोरिटी है
1: जी.
0: एंड चौथा कैरेक्टर में बोलता हूँ पार्शियली ड्राई, मतलब अक्सर लोग फोन करते हैं भाई साहब मेरा 3 घंटा पानी देता था, अभी सिर्फ 15 मिनट पानी दे रहा है. पिछले साल इसी समय 2 घंटा पानी देता था, आज सिर्फ आधा घंटा पानी दे रहा है, तो ये पार्शियली ड्राई हो चुका है. या पिछले महीने तक पानी देता था, अभी पानी नहीं दे रहा है. मैंने मेरे पास अभी जैसे किसान भाइयों का जो मेल आया है, जैसे पिछले हफ्ते आपने मेरा ये इंटरव्यू लोगों को दिखाया, ज्यादातर यही बोल रहे थे कि हमारा पिछले साल जून महीने में पानी था, इस बार जून महीने में पानी नहीं है. पिछले साल मई महीने में पानी था, अभी भी बारिश नहीं आई है, तो हमारा पानी नहीं है. तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश उनको साल भर पानी मिल रहा है, बट कई ऐसे बोरवेल हैं जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब सूखने लग जाते हैं. उनको भी हम लोग ये 4 कैटेगरी को माइंड में रखते हुए जल तारा बना सकते हैं. 15 फीट बाय 15 फीट, 2.5 फीट गहरा खड्डा, बस इतना.
1: तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
0: बस श्रमदान हो रहा है. एंड थैंक यू NSS, थैंक यू NCC, ग्रीन क्लब
1: जी,
0: जो हमारे कॉलेज के बच्चे जाके ये बना रहे हैं. पालघर में हमने 750 से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं पिछले 1 सालों में,
1: और इससे बड़ा भारी बदलाव आया होगा.
0: और सब अलाइव हो गए, सारे मरे हुए बोरवेल जिंदा हो गए, और क्या, पानी भरा हुआ, सब खुश हो गए हैं.
1: अच्छा, जो देश के सुदूर इलाकों के स्कूल कॉलेज ऑफिसेज मोहल्ले इस मामले में क्या कर सकते हैं, खासतौर पर अब ये हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस की जगह पर अपार्टमेंट आ गए हैं.
0: बिल्कुल.
1: और अपार्टमेंट में ये होता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं क्यों करूं वो करे, तो सब मिलकर करना जरा मुश्किल हो जाता है. तो ये कितना आसान है कि एक बिल्डिंग के लोग भी एक साथ आ जाएं और इस काम में जुट जाएं?
0: देखिए, ये 2 अलग-अलग पहलू हैं, मैं बताना चाहूंगा. मैंने जो कुछ 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया है जल संचय के ऊपर, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जुड़ गए इसलिए हो पाया. जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक जल तारा इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में 500,000 बच्चे होते हैं, वो सीख जाते हैं ये चीज, और वो घर जाके माता पिताओं को बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमारे स्कूल में दिखाया गया है, और हमने ये बनाया है, हम अपने घर में भी बनाएंगे, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है. और सबको मैं यही बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा काम मत कीजिए, 4 फुट बाय 4 फुट और 3 फुट खड्डा बनाइए और छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर दीजिए. हमारा काम शुरू हो गया जल संचय का. तो ये जहाँ यूथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यूथ इसमें जुड़ चुका है. तो वही मेरी कोशिश कर रहा हूँ स्वच्छ भारत अभियान का इंस्पिरेशन लेके, कि हम लोग इसमें यूथ को जोड़ें. तो स्कूल कॉलेज NSS NCC ग्रीन क्लब सबको इसमें जोड़ने की कोशिश है, जिसने बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है, बिकॉज इन लोग जुड़ चुके हैं. बाकी शहरों में जल संचय करना आसान है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन करना आसान है. खेतों में हमारे पास छत नहीं होते. अगर मैं मुंबई की बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, हर शहर में इतना कॉन्क्रीट बन चुका है, इतने छत बन चुके हैं कि छत का पानी बहने ना दें. छत का पानी एक बारिश के बाद एकदम साफ पानी आता है, वो पीने लायक पानी है. हम उस पानी को तुरंत हर घर जल संचय जो अभियान चल रहा है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स. छत का पानी है, मेरा छत मेरा पानी, मेरा स्कूल मेरा पानी है, वही मैं सबको बोल रहा हूँ. और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप अपने हिस्से का, आपके पास जो पानी आ रहा है आप रोक के रखिए, आपका छत नीचे पानी जाएगा तुरंत. इसमें खर्चा कम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बड़े से बड़ा. और बोरवेल तो हर घर में है आज के जमाने में. ट्यूबवेल बोरवेल हैंडपंप भी उसी कैटेगरी में आता है. कुएं, कुएं को लोग अक्सर बुझा देते हैं, कुएं में पत्थर डाल के बंद कर देते हैं. कुओं को आप लोग बिल्कुल बंद मत कीजिए. छत का पानी एक बारिश के बाद जो दूसरा पानी आ रहा है उसको कुएं में बिल्कुल, बस पाइप को तो आपको बस जो गटर में बाहर जा रहा था उसको आपने इधर कर दिया पानी,
1: सिर्फ डाइवर्ट करना है.
0: डाइवर्ट करना.
1: आपने कुओं की बात की तो मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई, और वो है कि एक जमाने में तमाम छोटे शहर और गांव में कुएं, बावड़ियां, छोटे छोटे तालाब और इस तरह की वाटर बॉडीज हुआ करती थी, जो अब खत्म होती चली जा रही है. जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, बावड़ियों को बुझा दिया गया, सुखा दिया गया, पत्थर भर दिए गए, कुएं खत्म हो गए, झीलें, तालाब. क्या महत्व है इनका? पुराने जमाने से लोगों ने इस बात को समझा था, तभी तो इन्हें बनाया था.
0: मैं आपको क्या बताऊं, इसका जवाब दूंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं हम सबकी गलती है
1: जी.
0: एंड मैं कुछ इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को उंगली नहीं बता रहा हूँ किसी

0: की गलती। पहले हम लोग तालाबों से पानी लेते थे, तालाब छोटे पड़ने लगे, आबादी बढ़ गई, तो हम लोग कुआं खोदना शुरू किए। कुआं छोटा पड़ने लग गया, आबादी बढ़ गई, हम लोग बोरवेल पे आ गए। बोरवेल कम पड़ने लग गया, म्यूनसिपलिटी बोली कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में पानी पहुँचा दूंगा। अब वो भी कम पड़ने लग गया है क्योंकि हम लोग बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये अलग अलग एल नीनो और अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, जो तालाबें थी वो नेगलेक्ट होने लग गई है, जो कुएं थे वो ऑब्सलीट हो चुका है। आज मैं किसी को भी बोलूं कि चलो कुएं का पानी पिलाऊं, बोलेगा भैया मरना क्यों चाहते हो, मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाता है, भैया इसी से पी लो। आप बताइए, मैं मुंबई में हूं, कोई कुएं का पानी पीने लायक है? कोई नहीं है।
1: कुएं कहाँ हैं
0: अब जो कुएं हैं प्राइवेट है कुएं,
1: जी?
0: अब जिस चीज का कोई उपयोग ही नहीं है हम उसको रख के क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विंटेज कार पड़ी हुई है, चलती भी नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको कबाड़ में ही डालना पड़ेगा ना।
1: जी
0: तो कुएं का मतलब हो गया ये तो कबाड़ है हमारे लिए, जिसका उपयोग नहीं है। हम 10 फीट बाय 10 फीट का खड्डा है पड़ा हुआ है, कोई गिर के मर सकता है, उसका पानी खराब हो गया, कुएं का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है 10 सालों से, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, क्योंकि पार्किंग लॉट सोसाइटी में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं सोसाइटी को, तो कुआं रख के फायदा क्या है? जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि कुएं का फायदा है, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी या कोई बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा या हम आप इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कुआं बेकार है। वही हुआ तालाब का सिचुएशन। मैं बंगाल गया था अभी, मैं बेंगलुरु गया था, चेन्नई गया था, जो सिटी ऑफ लेक्स बेंगलोर को बोला जाता था, अब तो लेक्स तो नजर ही नहीं आता है मुझे। बंगाल में आपको पता है मेरे दादाजी की शादी दादी के साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास एक तालाब था।
1: ओ हो,
0: मेरी दादी की जो मम्मी थी उससे मिली थी, उन्होंने कहा था उस समय पहले जमाने में जिस लड़के के पास तालाब है मतलब वो क्वालिफाइड है, तुम डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, तुम्हारे पास तालाब है मतलब पानी है, तुम्हारे पास तालाब है मतलब मच्छी है, तुम जिंदा रहोगे,
1: क्या बात है।
0: बाकी पढ़ाई लिखाई अपने जगह। तो वो कल्चर कहाँ गया है? तालाब इतना महत्व होता था। आज के जमाने में लोग गाड़ी खरीदते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बैंक बैलेंस दिखाते थे, उस समय बैंक बैलेंस और एफडी यही होता था,
1: तालाब होता था जो
0: तालाब है भाई इसके आदमी के पास।
1: हमारे शहरों के तालाब, कुएं, हमारी झीलें, बावड़ियां, ये धीरे धीरे विलुप्त तो होती चली गई हैं।
0: बहुत ज्यादा। और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये भी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ नदी, नदी बचाने के लिए नदी के किनारे जो घाट बनाने से नदी नहीं बचेगा, नदी होता है नदी के पानी से, नदी होता है नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, वो नदी होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर पानी पीने लायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पियो पानी, बट कम से कम अगर इंसान पी सकता है तो बाकी जीव जंतु भी उसमें रह सकते हैं। नदियों में जो लाइफ आसपास होता था, नदियों के पानी में जो मछलियां होती थी, अलग अलग तरीके के जानवर होते थे, वो सब मरने लग गए क्योंकि नदी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है।
1: जी
0: तो बहुत जरूरी है, जब मैं नदी की बात कर रहा हूँ, तालाबों की बात कर रहा हूँ, दीघी की बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लेक हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं अक्सर मैंने देखा है अलग अलग म्यूनिसिपलिटी के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के लोग, अलग अलग एनजीओ लोग, तालाब तो गंदा पड़ा हुआ है, तालाब में मतलब एक मछली नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन चारों तरफ बेंच लगा दिया, लाइट लगा दिया और वॉकिंग स्ट्रिप बना दिया है, वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, वो लेक रिजुनोवेशन नहीं होता है।
1: जी जी
0: जल
1: बिल्कुल।
0: शक्ति मंत्रालय ने जो रूल बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है, उसको पढ़िए, उसका पहला पॉइंट ही है क्वालिटी ऑफ वाटर, उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज किया जा रहा है। जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जल शक्ति मंत्रालय में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमारे देश के सारे धुरंधर वहीं बैठे हुए हैं। सच बताऊं, मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का, वो बहुत अच्छे सोच है उनका, वो सोच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सोचा आपके माध्यम से ये बात लोगों को बताऊं
1: बिल्कुल।
0: कि आप, आपके पास अगर तालाब है, तालाब से आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं। मैनग्रोव की कोई इम्पोर्टेंस नहीं करता है,
1: जी जी
0: मैनग्रोव से कितना केकड़ा बनता है, कितने टाइप के खाना आता है, आज भी करोड़ों लोग दुनिया में मैनग्रोव से चीजें ऐसी आती हैं जिससे लोग खाते हैं, खा के जिंदा हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि वो भी एक वाटर बॉडी में से आता है, उसी तरह हर तालाब को कंजर्व करना जरूरी है ताकि उसमें से मछलियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं खाने की चीजें उसमें से मिलती है। वाटर बेस्ड बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स आ गए, आजकल तो फ्लोटिंग फार्म भी शुरू हो गया है, और तालाबों का रक्षा करना हर किसान के लिए तो पहला धर्म होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी लाया है, वो पॉली पॉन्ड बना के देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। हर किसान को बोला गया है कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है उसमें से आधा एकड़ में आप पॉली पॉन्ड बनाइए, बारिश का पानी उसमें संचय कीजिए, उसके अंदर जमा कीजिए। और न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल, टेक्निक्स हैं, लोग उसका बहुत फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट करोड़ों पॉली पॉन्ड बनाए हैं देश ने।
1: जी जी,
0: मैं तो बोलूंगा कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक इंसानों का जो हिस्ट्री है, इतना बड़ा जल संरक्षण का अभियान कभी किसी ने न किया न कभी होने वाला है, जो इस समय हमारे भारत देश में चल रहा है।
1: जी, जल संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है कि आपके काम के कुछ और दिलचस्प हिस्सों की बात करें। एक आपके काम का हिस्सा है जो आम से जुड़ा हुआ है, ये क्या मामला है भाई? आम आदमी से आम तक?
0: बिल्कुल, आम आम नहीं, खास है।
1: अच्छा, आम के बीजों का संरक्षण, वो क्या मामला है?
0: जी, ये किसानों का लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है कि आज किसान इतना पानी के ऊपर निर्भर करता है, कभी ज्यादा पानी आ गया हमारा खेत बह गया, कम पानी आ गया तो खेत जल गया, हम ये बोलते हैं। इसलिए पैडी बेस्ड कल्टीवेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो कहीं पे गलती कर रहे हैं। एक फार्मर पूरा निर्भर हो जाता है कि हम चावल का खेती करेंगे या ऐसा खेती करेंगे जो सिर्फ टॉप सॉइल से आता है और जिसमें इतना इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर क्या क्या डालना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, हमारा पेड़ कभी मरता नहीं है। एंड टॉप सॉइल, ऊपर का जो मट्टी है 1-1.5 फुट का, इतना मैं बोलूंगा इतना डेंजरस हो चुका है, जहरीला हो चुका है, कि ऐसा कुछ खेती किया जाए जो जमीन के सब सॉइल से आए। तो फल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो जड़ उसका नीचे तक जाता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहे हैं। और फल, रोटी खाने से अच्छा है कि आप फल खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं, एंड बातचीत चल रही थी, जब बात हो रही थी कि हम लोग फल मिशन फ्रूट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात में लोगों को ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप फल खाइए ज्यादा,
1: जी जी,
0: आप चावल क्यों खाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, हम लोगों ने हमारा खेत जितना जंगल था काट दिया है, जंगल काट काट के हम लोगों ने सीधा जमीन कर दिया और उसमें सिर्फ चावल बो रहे हैं, शुगर केन बो रहे हैं, जितने फल के पेड़ काट दिए हैं, जंगल खत्म कर दिया है। अगर आप किसी को देखिए, जब खेती खत्म हो जाता है सब पीला पीला मट्टी दिखता है, काला मिट्टी तो दिखता भी नहीं है, इट इज ऑल बैरन लैंड। इसको बचाने के लिए मेड पे पेड़ प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का।
1: जी जी,
0: गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपके पास जितना भी जमीन है 20% जमीन पे फल का पेड़ लगाएं।
1: जी,
0: और जब मैंने किसानों से पूछा फल का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो किसान बोले हमें तो कोई फल का पेड़ देता ही नहीं है साहब, हमें तो इमली का पेड़ दे रहे हैं फल के नाम पे, सिर्फ आंवला का पेड़ दे रहे हैं, हमें तो आम दीजिए तो मजा आए। अच्छा, मुझे समझ में आया, आम आम नहीं है, खास है।
1: क्या बात,
0: किसी भी किसान को बोलिए आम का पेड़, बोले हाँ तुरंत, कभी नहीं मना करेगा।
1: जी जी,
0: आम हम लोग खुद भी खा लेते हैं इतना ज्यादा कि एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: इतना बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। एंड आम एवरग्रीन पेड़ है, पतझड़ नहीं होता है आम में,
1: बिल्कुल।
0: और मैं लोगों को बोलता हूँ आम का पेड़ एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें हर टाइप का जंगली जानवर रहता है।
1: वाह,
0: एक चिड़ियों का घोंसला भी दिखेगा, उसमें लेपर्ड भी बैठा होगा, उसमें शेर भी बैठा होगा, उसमें एक बंदर भी बैठा होगा और सांप भी रह रहा होगा। तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है,
1: इसलिए आपने ये मुहिम शुरू
0: की। इसलिए मुहिम, मेरी कोशिश ये है कि फार्मर्स को आम का पेड़ दिया जाए, और सिर्फ आम का पेड़ तो ऐसे एक बहाना है, जब हम आम का पेड़ देते हैं तो उसके साथ 15 अलग अलग वैरायटी के पेड़ भी दिए जाते हैं
1: फलों के,
0: फल के हैं, पॉलिनेशन के लिए इमली, वहाँ नीम का भी पेड़ दिया जाता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं ताकि आम जो और बड़ा हो सके और नेचुरल तरीके से हो सके।
1: क्या बात है,
0: ये है इसका टेक्निक।
1: अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहता हूँ कि जो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो जरूर दीजिए, ताकि ये तमाम बातें सुनने के बाद जो लोग प्रेरित हों, जो लोग इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहें या किसी और को जुड़ना चाहें, वो आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल कीजिए waterheroofindia@gmail.com पे।
1: जी,
0: एंड पिछले बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए कि आपका समस्या पूरे डिटेल में, सिर्फ हेलो लिख के भेजेंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय जाता है। आपको जल संचय करना है तो कितना जमीन है, किस शहर से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में लिखिए।
1: जमीन का क्या साइज है,
0: बिल्कुल,
1: जमीन का क्या मिजाज है,
0: छत का क्या साइज है, अगर आपको घर में में करना है, पानी की कमी है तो क्यों है, कितना है, थोड़ा सा डिटेल रहेगा तो हम और बेटर तरीके से समझा पाएंगे।
1: तो शुभजीत जी, आप सभी की ईमेल्स का इंतजार कर रहे हैं। आप ईमेल करेंगे तो इनसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने इलाके में पानी की समस्या का निदान कर सकते हैं। शुभजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर गाने की फरमाइश करनी होगी, फिर आपसे इजाजत लेंगे।
0: बिल्कुल जी, एंड इस बार गाना आप डिसाइड कीजिए।
1: देखिए, आप पानी पर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि माचिस फिल्म का पानी पानी रे गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप भारत के वाटर हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहिए और सार्थक काम करते रहिए।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।

ये था आज का मैटिनी शो। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग हैं और इस कार्यक्रम को जुबैर खान ने प्रस्तुत किया। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत, और हाँ, वाटर प्रिजर्वेशन की दिशा में हम सबको काम आगे बढ़ाना ही है। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने

0: में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

अनजान के बोल आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। डॉन फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। और आपको ये बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अरे अरे अरे अरे हरे हा उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जाना, चलना बच के मिस्टर समझे क्या उस

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन लाया, कौन
0: लाया? आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और आवाजें किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की।

असद जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम यादों की महफिल, और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राहुल देव बर्मन का संगीत गोलमाल फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। घर फिल्म से ये गीत सुनिए।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की पेज पर जाना है, इसके लिए आप www.facebook.com/vbsmumbai पर जा सकते हैं, या अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और देवनागरी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देंगी जो विविध भारती के कार्यक्रमों से संबंधित सारी पोस्ट यहाँ आती है, और रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट भी यहाँ आती है जिसमें कमेंट करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आज की इस कार्यक्रम की इबारत है कि कभी कभी जिंदगी निराशा की जमीन पर चलती है, कभी खुद पर रोना आता है तो कभी हालात ही ऐसे होते हैं। मन नकारात्मकता से यूं जुड़ता है, या कहें कि यूं जूझता है कि ऐसा लगता है मानो ये नहीं होता तो कोई और गम होता। आंखों के आंसू सपनों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, भूली हुई यादों की परछाई भी हमारे आज को डराती है, पर क्या यही है सच्चाई? क्या इस नकारात्मकता से बाहर निकलने की नहीं है कोई राह? एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मिलेंगे कई हाथ तुम्हें थामने को, ये साथ मांग कर तो देखो। तो ये है हमारी आज की इबारत। और कई बार जीवन में ऐसे वक्त आता है जब हमें लगता है कि किसी भी तरह की कोई उम्मीद या कोई आस बाकी नहीं है, लगता है कि कोई भी नहीं है जिसे हम अपनी बातें बता सके, अपना गम जिससे बांट सके, और जिसे हमारे गम से या हमारे दुख से कोई मतलब भी हो। और कई बार हम ऐसे समय में खुद को अकेला करते जाते हैं, खुद में सीमित होते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं लेकिन उन्हें अपने मन की कोई भी बात नहीं बताते और उनसे कोई बात साझा ही नहीं करते।

0: ये खुद को पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं, समय संजोग की बात है, खुश रहना चाहिए, जो पल खुशियां।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने संपूर्ण मेला क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। राज्य में सहकारिता के विस्तार को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। पैक्स कंप्यूटरीकरण और अन्न भंडारण योजना सहित 15 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य में अब तक 17,56,000 अयोग्य और 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स की हुई पहचान। सीईओ ने कहा, सूची को शत प्रतिशत त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध। सरायकेला खरसावा निवासी आशीष कुमार दास अग्रणी आईटी कंपनी इंफोसिस के अगले सीईओ नियुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने राज्य में मॉनसून की रफ्तार तेज होने का जताया अनुमान। आज रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित विभागों के स्टेक होल्डर्स और जिला प्रशासन के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसी सिलसिले में राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज सुबह ही संपूर्ण मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति की चौथी बैठक में पैक्स के कंप्यूटरीकरण, विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण और 240 MPCS में डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन योजना सहित कुल 15 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने इन विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध अनुपालन के निर्देश दिए। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की भी पहचान हुई है। उन्होंने कहा कि सूची को शत प्रतिशत त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है।
2: कोई तीन कैटेगरी में आएंगे, वो वोटर एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं तो एक जगह का अधिक जगह पर रखा है, नहीं तो इनक्वालिफाइड होता है, इनएलिजिबल पर्सन, एक से अधिक जगह पर है। तो आप स्टेट में भी हो सकते हैं, विद इन द स्टेट में भी, बाहर में भी हो सकते हैं। अभी वर्तमान में 2,21,000 आया है, वो कम्प्लीट एंट्री होने के बाद वो डेटा फाइनल होगा।
1: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से JPSC के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि CID द्वारा परीक्षा एजेंसी के 8 कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद अब आयोग के शीर्ष अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए।
3: चेयरमैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये हमें समझ में नहीं आता। JVM गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे JVM सरकार में और तुरंत वो चेयरमैन भी बन गए JPSC के, कि उन्होंने अकेले रिजल्ट पे साइन किया था, 3 सदस्यों ने डिसेंट करते हुए नहीं किया था। और श्वेता गुप्ता असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है साहब, उनका तो मई में तबादला हो गया था, ख्यांगते जी ने उनको रिलीव नहीं किया था, तो कॉन्स्पिरेसी एंगल में तो सीधे वो दोषी है। छापेमारी से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी, इनकी गिरफ्तारी कीजिए।
1: सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर अंतर्गत कृष्णापुर गांव के रहने वाले आशीष कुमार दास को देश की अग्रणी आईटी कंपनी इंफोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 5 वर्षों के लिए यह कार्यभार संभालेंगे। उनके इस ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उनके साथ हुई मुलाकात को याद किया, जहां झारखंड के खनन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग और युवाओं के तकनीकी कौशल विकास पर सार्थक चर्चा हुई थी। आकाशवाणी के

0: ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा के चांडिल डैम विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर आदित्यपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने परियोजना प्रशासक राजीव रंजन को 19 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने तक चांडिल डैम के जल स्तर को RL 180 मीटर तक ही सीमित रखने और प्रभावित युवाओं को रोजगार देने की पुरजोर मांग की।
1: विस्थापित पुनर्वास का कार्ड नहीं बन रहा है, उसके लिए भी कैंप लगा कर विस्थापितों को कार्ड दिया जाए। अभी बरसात में हर गांव पानी घुस जाता है, इसी तरह के विस्थापितों को समस्या है, वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाएगा।
0: इस दौरान निर्णय लिया गया कि लंबित मुआवजा मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। घूरती रथ यात्रा के अवसर पर आज 9 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर लौटेंगे। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में इस पावन अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वहीं शाम को होने वाली इस वापसी यात्रा और भव्य मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने संपूर्ण मेला क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। राज्य में सहकारिता के विस्तार को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। पैक्स कंप्यूटरीकरण और अन्न भंडारण योजना सहित 15 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य में अब तक 17,56,000 अयोग्य और 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स की हुई पहचान। सीईओ ने कहा, सूची को 100% त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध। सरायकेला खरसावा निवासी आशीष कुमार दास अग्रणी आईटी कंपनी इन्फोसिस के अगले सीईओ नियुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने राज्य में मॉनसून की रफ्तार तेज होने का जताया अनुमान। आज रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हालांकि जो चीजें नहीं पूछी थी उसका भी सही जवाब दिया है। और इस बात से खुशी तो हुई ही जाती है कि हमने जो पूछा, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जानकारियां हमसे बांटते हैं और साथ ही अपने जीवन की बातें भी हमसे साझा करते हैं। हमारे साथी ने कहा कि आज की इबारत में जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, जीवन की राह बहुत कठिन है, खुशी कम, दर्द बेशुमार है, दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि आंसू बहाने का समय नहीं, कोई भी कदम उठा, रास्ता बना, कोई साथ चले न चले, कहीं तो मंजिल मिलेगी, जैसे नदियां कल कल बहती रास्ता बना लेती हैं। गीत उन्होंने बताया है, किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये गाना उन्होंने अपनी पसंद का इसमें शामिल किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब जिंदगी की जमीन बंजर और निराशा से भरी लगने लगती है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि तकलीफों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों ना हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह की सकारात्मकता जब हम अपने अंदर रखते हैं तो वो सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गम और आंसू की बातें और गाने, इंसान अपने मनोभावों को कभी व्यक्त कर पाता है तो कभी नहीं, खासकर जब बात गमों की हो, वो मन ही मन अपने हालात से जूझता रहता है और तब तन्हाइयों में वो दर्द आंसू बनकर बहता है। किसी को पाने के बाद खोना और मिलने के बाद बिछड़ना, कहते हैं कि जब दर्द आंसू से छलकता है, मतलब इंसान जब रो लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। दर्द भरी यादें कभी तो ताउम्र सताती हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने मनपसंद कार्य में मन को लगाए, समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा या गीत संगीत सीखे, गुने सुने, गाएं, व्यक्त होने से उस दर्द को कम कर सकते हैं। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि राहें बंद नहीं होती, बस नजर का दायरा कभी कभी छोटा पड़ जाता है। एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत हो, जिंदगी का पासा पलट देती है ये हिम्मत। जिंदगी के कैनवास पर अगर आज काला रंग गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रंग खत्म हो गए, उस ब्रश को उठाने और एक नया रंग भरने की देर है। तो सकारात्मकता से भरे ये संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं और हम आपसे यही जानना चाहते हैं किस तरह से आप सकारात्मकता से सामना करते हैं अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का और दुखी

0: होना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कहने की भी दुख ही होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, वो भी चलिए कोई बात नहीं अगर ये काम एक आध दिन हो रहा है, लेकिन लगातार अगर यही हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि बाहर निकलें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा या आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से, किस परिस्थिति में हैं, किस निराशा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो बात सुनते हैं। और सुख दुख की बात अगर हम कहें तो भाई, सुख दुख से संबंधित ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत आपको सकारात्मकता का संदेश तो देगा ही। और फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताने वाले हैं।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को।

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर और बात हो रही है कि जब निराशा हमें घेरती है तो हम क्या करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए किसी प्यारे से दोस्त या किसी अपने का थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा सहयोग तो हमें लगता है शायद कोई इंसान इस परेशानी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें दौलत से नहीं बात करने से भी संभल जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभार मन किसी जाने अनजाने दुख से या यूं ही निराश होकर उसी में डूबता चला जाता है, कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में उस जगह से उठकर थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी चहलकदमी करें, एक दो लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातें करके मन को बहलाएं, मन को कहीं और लगाएं तो कुछ मन हल्का हो जाता है, वरना जितना डूबोगे मन इतना ही डूबता जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कभी कभी वो बात हमारे मन से निकलती ही नहीं, तो जरूरी है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें या उठकर बस एक चार पांच कदम भी अगर हम चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस विचार से निकल पाते हैं और कुछ और भी सोच पाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत हमें जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं के साथ ही सकारात्मक सोच की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय कर रही, किंतु सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई सकारात्मक पहलुओं के करीब अवश्य ही है, और जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमें सकारात्मक सोच की तरफ इशारा किया करती है, हम उससे ही उसकी सहायता से ही अपनी सकारात्मक सोच की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह हमें सकारात्मक सोच से भी बचते हुए उस अद्वैत आनंद की इबादत से ही ओतप्रोत रहते हुए संदेश देते हुए स्पष्ट करता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी जो भी वस्तु है वो गोविंद यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और उन्हें ही हम समर्पित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही जीवन के एक पहलू हैं और इन्हें बदलते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह मन के विचारों को भी एक ही तरफ एक ही जगह पर बचाकर या जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि निराशा हर किसी के जीवन में आती है, अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा उस निराशा उस नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए, और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

सीमा फिल्म का ये गीत सुना और इस फिल्म में और इस गीत में नजर आती हैं नूतन शुभा खोटे के साथ। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म चित्रलेखा के गीत के बारे में उन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की भारत का सारांश है कोई क्या जाने पीर पराई। और हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये गीत जब दिल टूटता है तो आशिक लोग गाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और गीत के बारे में ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मात्राधिक आशा ही कष्ट का कारण है, सबसे कष्ट और निराशा अपने कार्यरत आत्मनिर्भर बच्चों के फिजूल खर्ची से होता है। 8,000 के जूते क्या मुकुट है जो सिर पर पहनना है। भाई देखिए ये भी एक कारण हो जाता है कभी कभी, जब हम ये सोचते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी, हो सकता है किसी और के नजरिए में उस चीज की उन्हें जरूरत हो, सकता है वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों या कुछ बातें हों, उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है जिसका निवारण हमारे

हाथ में ही होता है। हमारे कोई साथी कह रहे हैं कि जब मन दुखी, उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहना है कि अपनों से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देखकर मेरा दिल गहराई से भर उठता है। जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूं तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है। मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की एक गहरी परत सी छाई रहती है। सोचता हूं कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता। आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई, हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज कर लेना हमारे बस की बात नहीं है, और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसलिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कहने कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं, मुझे गले लगा लो। जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है। जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर सिंह फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम, जुबिन नौटियाल ने इसे गाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि निराशावादी लोगों की जगह हंसमुख स्वभाव वाले लोगों के साथ समय गुजारना चाहिए। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छी संगति हो या खुश मिजाज लोगों के साथ अगर जब हम होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी जो ये हम सोचते हैं कि निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये जो दिन भर ये उदास रहते हैं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वक्त में ही उस व्यक्ति को ये लगता है कि जब हम निराश हैं या हम उदास हैं तो लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं और उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ है उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक ऐसा ही गीत। आपको ये बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

रही है, पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से मिलती है तो वह पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मंदे तु काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल या रहमान का संगीत और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे एक साथी कहने की वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है। जब भी कभी उदास या दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूँ, तो शादी से पहले मेरी माता जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्मपत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती, और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती

कि पापा जी हमें बेटियां ना समझकर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना। तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, सुख और दुख तो दुख छाव धूप छाव की तरह है जो जीवन में आते ही रहते हैं, जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूँ और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा, ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे को और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुखांत फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द दिया का एक गाना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है। हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और जाने तू या जाने ना फिल्म का जो गीत हमने सुनवाया था, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही, तो मुकेश के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है। इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तू या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

छिछोरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। और सुरीला सफर कार्यक्रम से बस लेते हैं इजाजत।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन

उनका स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्द ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है। लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिणांतरी कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जी एस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे फारूक कैसर के बोल्ड शिकारी फिल्म के। इस गीत में आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आपको बता दें कि शाम 4 बजे आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकेंगे फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

जी एस कोहली का संगीतबद्ध ये गीत आपने सुना नमस्ते जी। फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया और अनजान के बोल थे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म से ये गीत। मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

दिल दे के देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में ये अगला गीत। छोटी बहन फिल्म के इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया।

0: मेरी मंजिल। समाचार नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने अपने एक्स हैंडल पर इस्तीफे की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का वे सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वह सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस फर्जी खबरों, एआई और डीप फेक वीडियो, एडिटेड क्लिप और भ्रामक पोस्ट से संबंधित हर जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रही है।
1: सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि सूची को शत प्रतिशत त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। खरसावां सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर अंतर्गत कृष्णापुर गांव के रहने वाले आशीष कुमार दास को देश की अग्रणी आईटी कंपनी इंफोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 5 वर्षों के लिए ये कार्यभार संभालेंगे। उनकी इस ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के सिंदरी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों और विभागीय जांच की प्रगति का जायजा लिया गया। आईजी ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
2: जो कार्य होते हैं उसी का पार्ट है कि हमारे अंदर पूरे हमारे जोन में जितने भी प्रतिष्ठान हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है, जिससे मैंने अग्रिम इंस्पेक्शन चार्ट बनाई हुई है, उसके हिसाब से मैंने आज एसडीपीओ सिंदरी का इंस्पेक्शन रखा था, उसी क्रम में हमारा आज।
0: झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात और जलार्पण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। घुरते रथ यात्रा के अवसर पर आज 9 दिनों बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर लौटेंगे। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में इस पावन अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वहीं शाम को होने वाली इस वापसी यात्रा और भव्य मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में इस वर्ष अल नीनो का प्रभाव बेअसर साबित हुआ है और जुलाई महीने में हुई अच्छी बारिश ने राज्य में कृषि और मौसम की स्थिति को बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मॉनसून के रफ्तार पकड़ने से राज्य में बारिश की कमी दूर हुई है, जिससे सुखाड़ की आशंका कम हुई है और किसानों ने खेतों में धान की रोपनी तेज कर दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़े, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर, जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं, उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल, जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत सुनिए। आवाज तलत महमूद की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत, फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।
1: साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया,

0: फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे
1: अपने दुम में बांधे
0: अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला मैं तो साहब बन गया
2: Attention!
0: साला मैं तो साहब बन गया ए साहब बन के कैसा तन गया

0: तेली
1: क्या गंगू तेली,
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला में तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।
2: सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, इन्होंने भी

अपनी पसंद भेजी है और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंगिस किंग फिल्म का ये गीत, मयूरपुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथू खान, सिंहपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धा नंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है चोरी चोरी, ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
1: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
1: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
2: आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? यस सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट्स ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आपके सिंहासन पर बैठाने वाले हैं जनाब चंद्रा साहेब। हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
2: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
3: वो तो आना ही था।
2: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
3: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
2: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन। हाँ? मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीशचंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
3: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
2: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
4: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
2: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों अख्तर? होगी।
4: ओह जनाब अख्तर साहब, 100 टाइम
3: आधा वर्ष मिया।
4: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
3: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातमपुरसी करने चला आया था।
4: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
3: तो और करता भी क्या है?
4: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
2: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं, तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
4: हाँ, मैं मानता हूँ ऐसा ही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलोसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
3: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
4: जी हाँ, पर अकेले नहीं, बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
2: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
3: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
4: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो।
5: तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
6: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
7: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
5: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
7: करेक्ट।
6: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे।

0: चलो बाहर चलो
1: चलो चलो
2: रितु क्या मंगवाए?
3: बस कॉफी।
1: बेरा
4: जी सर,
1: दो कोल्ड कॉफी।
4: बोलो सर।
3: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
2: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
3: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
2: जरूर मिलती है।
3: फिर मैं पूछती हूँ कि वे तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
2: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली हैं।
3: अच्छा
2: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती हैं? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
3: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
2: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
3: तुम मजाक कर रहे हो।
2: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
3: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
3: फिर वही बात।
2: रितु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
3: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
2: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
3: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
2: साल दो साल, ये सजा क्यों?
3: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
2: तब तक मैं क्या करूं?
4: सर बिल।
3: तब तक बिल चुकाओ।
5: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
6: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
5: आसान होता तो तुम्हें ये नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
6: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
5: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
6: हरीश ने अभी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है, गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
5: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
6: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे, अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
5: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दिल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
6: जी।
5: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
6: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
5: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम में लाओ।
6: वो क्या मेजर?
5: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंतीलाल को वही तो दल में लाई थी।
6: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
5: यू आर राइट, एंड दैट मींस मनी।
6: ऑफ कोर्स।
5: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
6: जी।
5: सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
6: आप फिक्र मत करें मेजर।
5: ऑलराइट मिस्टर फ्लेक।
4: थैंक्स।
0: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
7: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
0: अरे यहीं था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
7: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
0: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे। अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
7: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
0: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं, बेकरारी के हैं।
2: मैं समझा नहीं।
0: बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
7: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
0: वो कैसे?
7: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
0: अच्छा,
7: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
0: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
7: यही तो समझ में नहीं आता। जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
0: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब ना कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती।
7: छोड़ो इस बात को।
0: पर हरीश तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
7: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता?
0: लेकिन वही रीता अब तुमसे इंतजार करने को कह रही। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
7: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो। उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
0: ये कारण अख्तर तो नहीं?
7: अख्तर?
0: हाँ, उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता
7: हूँ। नहीं, वो नहीं हो सकता, रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
0: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी। नारी इतनी सरल नहीं होती।
7: पुरुष ही कहाँ इतना साफ होता है। स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
0: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
7: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
0: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
7: अच्छा चलो
0: चलो। हरीश ऐसा
7: नहीं? नहीं सचिन।
6: हेलो हरीश। हाय सचिन।
7: हेलो हेलो।
6: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
7: हाउ डू यू डू?
3: हाउ डू यू डू? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब तक आपसे आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
6: कॉफी? श्योर श्योर, क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है।
0: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
3: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
7: मैं
6: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
3: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
7: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
6: दैट्स गुड,
3: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र।
6: बैठिए। बेरा बेरा।
4: जी साहब।
6: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
3: जी नहीं।
6: तुम कुछ लोगे हरीश?
7: मैं कुछ नहीं लूंगा।
6: ओके बस तीन गरम कॉफी लाओ। बेरा
4: अभी लाया सर।
6: हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है। गाना, नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
7: That's a rare combination.
3: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
6: भाई ऐसी बात नहीं है।
4: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
6: अच्छा देखो, I'm sorry, Alka. मुझे फौरन बुलाया।
8: क्या हुआ?
6: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश,
8: चलो चलो हम भी चलते हैं।
6: नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
3: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
0: मैं छोड़ाऊंगा।
6: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
6: ओके
9: रितु, हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया?
3: क्यों, क्या हुआ पापा?
9: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं। थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
3: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
9: हाँ, साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
3: लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
9: हरीश कितना बहक सकता है ये उस शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
3: पापा, आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
9: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था। तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा, और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका। वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
3: पापा, आपको आज क्या हो गया है? अभिनय, नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
9: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता, मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन डीएसपी मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है। कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं, हरीश का उसके साथ क्या काम?
2: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी पगली कहीं की।
3: मैं रो का रही हूं।
2: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
3: पापा, मैं आपको दोष नहीं देती।
2: दोष मेरा है। मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये भूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
3: पापा, पापा, हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा, अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती, उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था, हरीश उनका प्रिय छात्र था।
9: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
3: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
9: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कहाँ तक कुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने करवाहट पैदा कर रखी। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौर तलब है कि इंकलाब खुशियां सुनने से ज्यादा नई खुशियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से इंकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर की दूर रह जाते हैं।
3: देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते
0: हो। जिंदगी में कुछ कुछ लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: इसे तुम जहन्नम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत हुरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
1: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
0: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
1: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
0: परेश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले एक्शन में तुम्हारा ये हाल है?
1: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच पूछती हूँ।
0: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
1: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
0: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
1: शट अप,
0: जबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर उगलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
1: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
0: हरीश,
2: ये सब क्या है?
0: हरीश गद्दार है मेजर।
2: क्यों हरीश, क्या बात
1: है? मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
2: तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
1: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
0: ये बकता है मेजर।
2: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
1: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए।
0: हरीश,
1: आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
2: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
0: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
2: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे।
0: मेजर,
2: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की।
0: मेजर,
2: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
1: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
0: हाँ, मैं जलील हूँ लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।

0: ओहो, कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ?
2: खून? अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आ सको तो जल्दी चलिए। अच्छा
0: अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं से उनका मन व्यथित था और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्याग पत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की भी पहचान हुई है। पलामू जिले की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले 2 महीनों में 19 थाना क्षेत्रों से 104 गुम मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने आज मेदिनीनगर में आयोजित विशेष शिविर में मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में आज 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस ने महिलाओं से चेन छिनतई की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए लूटी गई सोने की चेन बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि घटना में शामिल कोढ़ा गिरोह के अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने आज देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जाए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से
2: जी,
1: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कस्तूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन, समीर सेन आए
2: जी।
1: 2006 में मेरा पोता सोहेल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
2: जी।
1: तो ये 5 पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना

0: बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन, वो सितार मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे। छठा मैं छठी मतलब छठा मैं था दिलीप सेन। तो करते करते निकला, एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
1: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
0: जी जी।
1: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो
0: छठी
1: पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए।
0: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की कलकत्ता रेडियो से। वहां पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
1: मतलब टैगोर साहब मतलब रविंद्रनाथ
0: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में कुछ साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर, वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए करेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे
1: जी।
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था, तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछियां होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का
1: जी, जी।
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था।
1: हाँ।
0: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी।
1: खेमचंद प्रकाश
0: वो भी हमारे ही गाँव से थे, सुजानगढ़ से
1: जी।
0: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया जी,
1: बिल्कुल
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास चुरू से थोड़ा पास बीकानेर शहर से जो है पंडित भरत व्यास
0: जी है, गुलाम मोहम्मद जी,
1: गुलाम मोहम्मद साहब।
0: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही
1: है।
0: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं
0: जी। बिल्कुल सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी।
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत। और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना, तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी, अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं। तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी।
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक धिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक, अब ये दिन ताक धिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक धिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लेंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर जोर शोर अर अर, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये कि गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारे दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ, क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एच डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी, जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
0: जी,
1: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि

0: समय समय पर संगीत बदलता है, वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
1: वो वही,
0: जो हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को। तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी,
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति
0: आई, और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से?
0: देखिए, फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था।
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो, बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे।
1: हाँ।
0: या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी,
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते तीन चार साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीजें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक लेने जाएंगे या पैसे दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल,
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये प्रकाशन में नंबर 1 है इंडिया के, एक माने हुए प्रकाशन हैं, जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो
0: सच्चाई है, जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? मैं बोला यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: तो 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150, 200, 300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल
1: कमाई
0: जाता था।
1: जी।
0: बोला ये खामा का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे
1: अच्छा, गीतकार।
0: गीतकार। तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो।
1: जी
0: तो मैं असद भोपाली साहब को बोला मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर 2 दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा। मुझे बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है, बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें, बोले यही बच्चे, बोले ये बच्चे सुनाएंगे, ये तो किसी एंगल से ही लग रही रहे मुझे डॉक्टर, और वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं
1: जी
0: हमारी,
1: बिल्कुल।
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4, 4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त मैं जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे।
1: जी
0: तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए, तो एक छोटा सा लेटर था वो साइन करवाया, हमको एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला
1: जी
0: भाई पिक्चर मिल गई। तो
1: जी
0: आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली
0: सुरमा
1: थी।
0: भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़े की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: जी जी
0: मगर कंपोजिशन में बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुरा ना माने तो सुनाना चाहूंगा,
1: बिल्कुल।
0: हमने ये दिल्ली के सारे गाने कंपोज कर लिए थे।
1: हाँ
0: तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते,
1: जी
0: बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोले ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोले ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कू आई लव यू तू नाक धुन तू धुन तू नाक धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है?
1: क्या है
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया।

0: पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप अपना
1: मैं
0: ही।
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
0: अच्छा,
1: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
0: तो ये गीत सुन ले
1: जी,
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे
0: जी।
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में, मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो वो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सब में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
0: जी।
1: ये 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके से वो रहा, तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा उन्होंने
0: कि एक नई बात है,
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी कहूंगा, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
0: जी।
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: आईना और ये दिल लगे में
0: जी। तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला
0: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
1: बहुत बड़ी नहीं, ड्रीम था, सपना था,
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
0: अच्छा।
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
0: अच्छा।
1: फिर ऊपर करके कसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी
0: जी।
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक दिन आगे दिन दिन तीन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया
0: जी।
1: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
0: अच्छा।
1: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहां पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के गया दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया? मैं बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई क्या, जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रहेगी। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद के ले जा तक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था? मैं बोला सजना वे मेरे नींद के ले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा तक। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना, मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
0: नम्रता, इतनी नम्रता
1: के अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का लौंडा हूँ।

0: जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया,
1: लेकिन एक महान,
0: मगर उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला, आप ये दोबारा करो मैं गाऊंगी, तो गाया और वो गाना कमाल हुआ,
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का, हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजे नाम।
1: बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते दीदी के पैर छुए, माफी वाफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी, बोला नहीं नहीं ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था।

0: ये दिल की लगी
1: वासंदे
0: ना समझो इसे दिल लगी,
1: दिल की
0: सुना उन्होंने बोला इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से। बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं।
1: हाँ
0: तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल
1: दिल
0: है तुम्हारा,
1: तुम्हारा
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है नया स्टाइल है गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग गया।
0: था।
1: हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है ये मेरे दिल के करीब है।
1: जी
0: बोला अच्छा। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ जब कोई गाना है, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था।

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: दो मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी। तीन बोले नहीं ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया, गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे
1: जी।
0: तो यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का, एक ही समय में चार गाने गाए हूँ। ये मेरे लिए बहुत
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। और मैं समझ रहा हूँ शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए
1: जी।

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसे ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा।
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन
1: बिल्कुल।
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा, लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में, तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे।
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता
1: हूँ, गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूं आपको, जैसे हरिहरन जी चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं,
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा के
0: हम चित्रा जी बोलते हैं उनको, उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना

0: से
1: क्या
0: नो।
1: बात है, बहुत
0: तो ये गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी जी।
0: जब सैम दोनों सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुल पचीजिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी। तो उसका एक गाना था

0: बहुत गहरा गाना
1: अब
0: था
1: ये
0: ये।
1: गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते
0: जी,
1: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है
0: उसको भी रखना है।
1: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं मैं 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ, नहीं नहीं मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है,
0: जी
1: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में मैं बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाजे से ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं लोग, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तुझे मैं छुपा लू, ओ तो ये मुर्गी रिमेंड ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम
0: जी,
1: लुबराते हैं
0: साइकोलॉजिकल,
1: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको फिर अटक गए तो अटक गए,
0: अटक गए।
1: तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकालवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और काबिल हैं।
0: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का
1: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है
0: जी।

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्याग पत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर अंतर्गत कृष्णापुर गांव के रहने वाले आशीष कुमार दास को देश की अग्रणी IT कंपनी इंफोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 5 वर्षों के लिए यह कार्यभार संभालेंगे। उनकी इस ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने आज देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जाए। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में आज 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जामताड़ा जिले की पुलिस ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र से 1 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8 मोबाइल फोन, 7 फर्जी SIM कार्ड, 4 ATM और 31,000 रूपये नकद बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हुए हैं। श्रोताओं के लिए पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत करो। साथी जोहार करना, और आज देखा कि हमारे साथ थे वीरेंद्र भाई, तो हमें जोहार करना।
1: जोहार जोहार संतोष भाई, कार्यक्रम किसान वाणी सुने सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार एंड प्रणाम। और देखा कि अभी जैसे

0: तो वह तो आज के डेट में छोटा छोटा डोभा जब कोड़ल जा लगल है और वो जैसे सूख जाए तो पूरा करना का है। छोटा छोटा डोभा अगर जैसे निर्माण जैसे सरकार के द्वारा या अपन से भी कर ले हा तो सबसे बड़ी बात है कि ओकर में एक चीज़ की हमेशा ध्यान रखिए, प्लास्टिक पूरा बिछा के चारों साइड से कवरिंग कर दा, मतलब गड्ढा में, और बाद बाहरी पानी जमा करके रखा तो ज़्यादा दिन पानी रहता और पानी जमीन में सूखतो ना और ज़्यादा दिन रहते थोड़ा सिंचाई के रूप में। हर एक तरफ से अगर चाह बिना प्लास्टिक अगर तू रखवा तो सबसे बड़ा फायदा का हुआ है कि पानी जैसे जमीन में रहते तो आजू बाजू के एरिया में पानी के लेयर बढ़ो है। देखो छोट छोट बात के ध्यान दिए तो हम इन पानी के बचाव कर सको। एक अलावा जैसे सूक्ष्म सिंचाई के जेकर में मतलब चर्चा करल गेल हो तो सबसे पहला चीज है सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरीगेशन, यानी कि कोई भी खेती में आज के समय में उन्नत तकनीक के करना बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग के माध्यम से खेती करे से पानी थोड़ा कम लगो हो। वो क्या है कि अगर हफ्ता में एक दिन में तू का कर ला कि 10-15 घंटा एक एकड़ में पटवे में समय लगा देला, लेकिन तू डेली अगर शाम सवेरे 20-20 मिनट 25 मिनट डेली तू पानी चला हुआ है, यानी 40 मिनट डेली पर डे, तो उसे क्या हुआ कि पानी की बचत हो है। बचत कैसे हुए कि हमारा पौधा में जैसे दलिए है ना ऊपर से जैसे प्लास्टिक ढकल है, वाष्प होकर ऊपर ना उड़ के बल्कि जमीन के लेयर के पानी को बढ़ावे, धीरे धीरे जमीन के अंदर ही पानी रहो ऊपर से लेयर बढ़ो है। तो कोशिश करे चाहिए सूक्ष्म सिंचाई से खेती करे के चाहिए किसान के और पानी के संरक्षण भी करे के चाहिए।
1: बहुत अच्छा बात बतैला और हमें उम्मीद है कि हमने के किसान भाई बहन सुनकर जरूरी उपाय करती। देखा कि पानी के बचत हमने के लिए बहुत जरूरी है और आवेला दिन के लिए भी हमें सुरक्षित पहले से कर लिया चाहिए। और सबसे बड़ी बात वो गर्मी के दिन में देखा कि हमने के जो किसान भाई बहन है थी सिंचाई के लिए बहुत समस्या झेलो थी और सबसे बड़ी बात है कि पानी संरक्षित ना कर पावो थी समय रहते। तो कोशिश करे चाहिए किसान भाई बहन के समय रहते पानी संरक्षित कर रहते सूक्ष्म सिंचाई जरूर करती और जैसे कि टपक विधि जकरा ड्रिप इरीगेशन वो विधि जरूर अपने थी। विधि से ये फायदा हुआ है कि जितना मात्रा में पानी चाहिए उतने मात्रा में फसल में जेते और बेवजह पानी बर्बाद ना होते। पहले कहा करो थे किसान भाई बहन की मोटर लगा देते तो पानी बह रहा इधर उधर तो बहुत सारा पानी बर्बादी भी हो जा रहा है। साथ देखा कि फसल भी कहीं कहीं देखो सड़ जा रहा पानी ज्यादा जमा होने के कारण, तो बहुत सारा समस्या पहले हुआ ले। लेकिन अब कहा है कि बहुत सारा चीज अब धीरे धीरे बदल रहा है, वैज्ञानिक पद्धति अपने लिखीन है और बहुत तरीका बदल रहा है, समय से हर कुछ करो लगलती और नया नया विधि अपना कर अभी देखा कि अच्छा खासा फसल लगा रहती और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी के बचत बहुत अच्छा तरीका से भी करी थी।
0: हाँ ये बात तो तू बोल रहा है बहुत अच्छा बात बतल है, लेकिन अभी कुछ तकनीक और है पानी बचावे के। ओकरा हम इन 2-3 तरीका से जैसे घर से अगर छत से जब पानी गिरो है ओकरा कोशिश करे चाहे कि सॉकेट ऐसा ना कि जहाँ बोरिंग है वहां पर ना, वहां से कम 50 फीट के दूरी में ओकरा सॉकेट आदमी बनावे के चाहिए ताकि पानी अंदर सुखर जमीन के लेयर के पानी ओकरा में बढ़तो। दूसरा तरीका है कि खेत के मेड़बंदी, यानी कि खेत के जब भी बंधाए करो बहुत अच्छा तरीका से करा ताकि धान के खेत में तुहर 6-7 इंची पानी तो से भी पानी के लेयर बढ़ो है, जैसे बारिश के पानी भरो इन साल कम पानी गिरे थोड़ा ढंग से तोर बंधाए रहते तो खेत में पानी भरल रहते। तो ये सब छोट छोट बात के अगर तू ध्यान देवा तो तुहरा अच्छा मुनाफा और अच्छा फायदा हो। तो हल्का हल्का बात के हमेशा हमेशा किसान के ध्यान दिए के चाहिए। एक अलावा पानी बचाने का और तरीका बहुत सा तरीका है, जैसे कि अगर हमें मतलब जैसे पानी बहो है पूरा बड़ा जल संचयन जगह बना सको जैसे डैम बांध के या बांध बांध के, जैसे बहुत ऐसा है कि नदी में आज के डेट में का करल जा लगल है कि हर मतलब देखवा कि 1 किलोमीटर 1/2 किलोमीटर 500 मीटर के दूरी में एक एक पत्थर से मतलब 15-20 फीट चौड़ा करके पूरा बांध दिया जाए ताकि उस जगह पानी आके जमे फिर पानी धीरे धीरे बहते जाए। और जैसे जैसे पानी जमते ओकर दो फायदा हो, सबसे पहला है कि ओकर में पानी तो जम तो पानी के लेयर स्वतः बढ़तो। दूसरा फायदा सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में प्राकृतिक खाद जो है जैसे गोबर वगैरह बह जाए तो का वहां अगर हो गड्ढा टाइप के तो जैम भी जेतो और जैम जेतो तो जैसे पानी जब सूखतो गर्मी के मौसम में तो वो जैविक खाद के तू अपन खेत में भी यूज कर सको। हाँ
1: तो देखा कि बहुत अच्छा बात बतेले, इस प्रकार से अगर पानी संरक्षित कर होती तो अवेला दिन सुरक्षित होते हैं। आगे हमने बात करवा वीरेंद्र भाई की प्राकृतिक खेती जैविक खेती की जो महत्व है ओकर बारे में हमने किसान भाई के बतावे चाहे।
0: हाँ
1: तो अगर मैं तुम्हार का विचार हो प्राकृतिक खेती
0: या
1: जैविक,
0: देखा प्राकृतिक खेती या जैविक खेती, यानी प्राकृतिक खेती का मतलब है जैसे आज के समय से आम हो गलो तुहर है ना, अमरूद हो गलो, कटहर हो गलो, औरा बहरा सारा ये हो गलो प्राकृतिक खेती है ने?
1: बिल्कुल।
0: और ओकर अलावे देखा कि जैविक खेती, जैसे जैविक खेती में है कि अगर हम कोई

0: भी चीज़ की अगर खेती करो ही, जैसे कि धान के, मक्का के, गेहूं के, कोई भी सब्जी, तो ओकर में रासायनिक खाद छोड़ के बल्कि जैविक खाद के प्रयोग करो, जैसे गोबर सड़ल हो गलो, फिर बर्मिंग कंपोस्ट खाद हो गलो। एकर अलावा देखा बहुत सा जैविक बाजार में भी उपलब्ध है, तो ओकर से जैविक खेती ओकरा कहल जाए। प्राकृतिक खेती में जैसे आम, अमरूद, कटहर, बडहर, लीची है ना, सरय, आंवला, बहला, ये सब आवे।
1: बिल्कुल, देखा कि प्राकृतिक खेती में और महत्व हुआ है, जैसे कि अगर में सबसे बड़ी बात हुआ कि खाद या कीटनाशक खरीदे की जरूरत ना पड़े और किसानों के जो हुआ कि खर्च ना के बराबर हुए। दूसर में बात देखा कि मिट्टी में जीवंतता बनल रहे, मतलब कि जीवामित्र बीजा मृत जैसे स्थानीय प्राकृतिक पदार्थ में मिट्टी के अंदर केचुआ और उपयोगी जीवाणु तेजी से बढ़ो है, ये प्राकृतिक खेती के जो महत्व बता रही है। तीसरा हो गए कि जल संरक्षण की बात अगर में करल जा सको कि खेती के नमी बना रखे खतीले अगर में प्रयोग करल जाए जगह से कम पानी लगो। हाँ। तो ये सब हो गए प्राकृतिक खेती के महत्व। अगर हम बात करिए जैविक खेती के महत्व के बारे में, तो सबसे पहली बात है कि उर्वरक प्रबंधन अगर में हुए बाजार में बेहतर दाम मिलो है।
0: हाँ।
1: और साथ ही देखा कि प्रदूषण मुक्ति भी हमने के मिलो है। अगर उर्वरक प्रबंधन के बात करिए अगर में देखे गोबर के खाद, कम्पोस्ट हो गलो, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद के प्रयोग करे तो मिट्टी में पोषक तत्व की कमी के पूरा करल जा सको। तो इस प्रकार से देखा अगर सारा चीज हम करो तो मिट्टी में हमेशा पोषक तत्व बनल रहते। साथ ही अगर बाजार में बेहतर दाम की बात करिए तो देखा कि जैविक उत्पादों के लिए बड़े मानक में प्रमाणन होवल जाए और अगर में किसान सबके देश विदेश बाजारों में अच्छी कीमत भी मिलो है।
0: हाँ।
1: अगर जैविक खेती से हमने खेती बाड़ी करी हो तो अच्छा दाम भी अगर से हमने की किसान भाई को प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण मुक्ति की अगर हमने बात करिए कि रासायनिक खाद के उपयोग बंद हुए से सबसे बड़ी बात है कि भूजल और आसपास के पर्यावरण सुरक्षित रहें और ये प्रदूषित हुए से बचल जा सके। तकर से देखा कि बहुत फायदा है अगर जैविक खेती हमके किसान भाई बहन करो थी और प्राकृतिक खेती करो थी तो दोनों बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा आमदनी भी मिल जाता है, कम लागत मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वातावरण जो पर्यावरण है वो भी दूषित हुए से बचावल जा सको है।
0: देखा ये बहुत अच्छा तू बात बताला है प्राकृतिक जैविक खेती में, खास करके कोई भी चीज अगर हम जैविक तरीके से अगर करो ही है तो कर सबसे बड़ी बात है कि जमीन के जो बंजरता होगी जो संभावना कम हो, जिससे बहुत से ऐसे खेती हो गए तो देखे था कि ऊपर का मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाता है, नीचे धीरे धीरे एकदम पूरा सील हो जाए, यानी कि हार्ड हो जाए, हार्ड हो जाए तो पानी सोखे के क्षमता ओकर में कम हो जाए। तो ऐसा स्थिति में किसान जब भी कोई भी चीज की खेती करो है भाई प्राकृतिक खेती ज्यादा सुटेबल हो और जैविक खेती ज्यादा सुटेबल हो, एकर में पानी सोखे के क्षमता ज्यादा हो। और अगर हमें अगर यदि रासायनिक खेती करो तो थोड़ा पानी सोखे की क्षमता ज्यादा हो, लेकिन रासायनिक खेती का तुरंत रिजल्ट क्विक रिजल्ट दे जेकर तो किसान वगैरह करो थे, लेकिन बहुत बड़ा गलती भी कर गलत थे। धीरे धीरे हमर कहना है कि आज तू जो है खाद में जैसे जैविक खाद हो जहां तू 100% चलवे था रासायनिक खाद ओकरा 50-60-70% में लावा, 30-20% हर साल ओकरा बढ़ते था जैविक खाद के, धीरे धीरे पूरा जैविक खाद में तू ले आना, देखा तुहर उत्पादन भी अच्छा होता, ओकरा रख रखाव करे भी अच्छा होता। कभी कभी गाँव में तू चर्चा देखे थो कि हमारा अलुआ हले गोबर में लगे लिए ना से बड़बड़ बैठले आर ऐसो सरल ना है ने कीट व्याधि ना लगले। तो ये बहुत बड़ा महत्व चीज है, उत्पादन तो हम कर ले ही रासायनिक से लेकिन उगरा स्टोरेज करके रखना बड़ा दिक्कत चीज हुआ है। लेकिन अगर तू जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करो है तो तुहर मतलब तुहर सड़तो गलतो ना और ज्यादा दिनों का लाइफ मतलब लाइफ हुआ लास्टिंग हुआ, तो छोट छोट बात की अगर तू ध्यान दे तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा बेनिफिट हो तो।
1: बिल्कुल, और देखा कि हमने चर्चा आगे भी करवे और हमने के किसान भाई भी सोचते होते हैं कि मनोरंजन हो जाते तो कार्यक्रम में और भाई अच्छा लगता है सुनने में, तो तुहर का विचार वीरेंद्र भाई कि मनोरंजन हो जाए गीतनाथ के साथ?
0: हाँ एकदम मनोरंजन होना चाहिए।
1: तो हमने सभी मिलकर सुने के प्यारा सा गीतनाथ।

तो देखा कि कितना बढ़िया एक गीत ना सुन लिया भाई कि मतलब पूछले सुगवा उड़ी गेले करके बोल हले। और अब हमें एक जानकारी के तरफ बढ़ोइए, जैसे कि आज जानकारी संतोष भाई लानले थीन भेंटवार्ता है, धान की खेती पर विशेष जानकारी है। और ये जानकारी थीन बिंदु यादव और हमें से बात करते संतोष कुमार दास। तो ये जानकारी भरल बात के सुनोइए और समझोइए।

0: किसान भाई बहन, आज हमारे साथ ऐसे सफल किसान हैं जो कि बहुत ही मेहनतशील किसान हैं। तो आज इनसे खास बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं और कैसे सफल बने। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हम आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे।
1: मेरा नाम बिंदु यादव है। मकान टूटीलावा, थाना सिमरिया, जिला चतरा, पोस्टर टूटीलावा।
0: तो बिंदु जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लगभग कितने सालों से कर रहे हैं?
1: खेती तो कर रहे हैं 30 साल से।
0: 30 साल से?
1: हाँ। अच्छा। वही धान करते हैं।
0: तो आप 30 सालों से खेती बाड़ी करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितना जमीन है जिसमें आप खेती बाड़ी करते हैं?
1: हमारा जमीन लगभग 4 एकड़ लगभग पड़ता है। 4 एकड़ में बनो कि वही धान, टमाटर, गोभी, धनिया, मकई, यही सब खेती मिला जुला के मनुके करते हैं।
0: कहने का मतलब इतने सारे आप खेती बाड़ी करते हैं। तभी का मौसम जैसे बरसात का मौसम है, इस मौसम के अनुसार आप कौन कौन सा फसल भी लगाए हैं?
1: अभी फसल तो यही लगाए हैं, गोभी का मनो बीजा किए हैं, कुछ किए हैं, कुछ लगा दिए हैं मनो की 5-6 कट्ठा, और टमाटर भी लगा दिए हैं 10 कट्ठा।
0: अच्छा।
1: और मकई मनो की 20 कट्ठा में लगा दिए हैं। मकई लगभग 1 फुट के हो गए हैं। और धान का फसल है उससे तो अभी तो मनो की 2-4 दिन तो रोपा हो जाएगा, पानी का साधन है अभी, कोड़ी कुदाल सब हो रहा है, यही तो।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप इतने प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि धान की खेती के बारे में, कि धान की खेती के लिए आप कौन सा बीज का प्रयोग करते हैं?
1: धान तो यही लगा रहे हैं, सब पहले तो लगाते थे देहाती धान
0: जी।
1: और 20 साल से तो मनो हाइब्रिड में मनो की यही हो गया, पनियर हो गया, 1 साल छोड़ के बदल के लगाते हैं, 52 हो गया, 51 हो गया, यही सब तो मनो की लगभग मनो धान करते
0: तो
1: हैं।
0: सबसे अच्छा भी कौन सा है?
1: सबसे अच्छा में से धान है भी पनियर।
0: पनियर
1: अच्छा।
0: तो इसका मतलब पहचान क्या होता है?
1: इसका पहचान होता है वही बाल, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और पैदा भी अच्छा है, यही तो मनुख्य।
0: विशेष ध्यान क्या रखना पड़ता है धान की खेती में ताकि नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो?
1: खेती में जैसे कि कादो बना दिए, उसमें मनुखी 1 ठो होता है दवा मनुखी, उसको मनुखी घास उसको वाला छिड़ देते हैं।
0: अच्छा।
1: 1 रोज का आगे फिर होकर बिहान उसमें चौक चला देते हैं, फिर DAP मार के उसमें धान लगाते हैं, है ना। धान लग जाता है तो 15-20 दिन होता है, 15-20 दिन के बाद फिर 1 किलो और इकट्ठा में 1.5 किलो यूरिया मारते हैं, और कीड़ा न लगता है तो वही दवाई का प्रयोग करने पड़ता है, और नहीं लगता है तो मनो की धान का फसल तो अच्छा होता है।
0: तो अभी धान जो आप लगाए कितना जमीन में?
1: यही धान मनो की 17 किलो का बिहर किए हैं,
0: 17 किलो
1: वाले कट्ठा में मनो की 3 किलो बोलता है दुकानदार, मगर 3 किलो नहीं होता है मनो कट्ठा, 1 किलो वही 2 kg करके होता है मनो लगाते हैं हम लोग 1 ढंगुर करके, यही तो।
0: चलिए, अभी आप रोपा नहीं किए हैं, तो रोपा करने के पहले आपको किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करना पड़ता है कि ताकि अच्छा से हो?
1: जैसे कि इसको जोत दिए,
0: जोत
1: के छोड़ दिए 2 चार, फिर मनो की 1 चाह जोत दिए, फिर दोबारा मनो की 2 चाह और कुछ चौकी दे दिए, घास गल जाता है, फिर तीसरा में जाते हैं तो उसको जोत के कादो बना के और लगाते हैं धान।
0: तो अपने से करते हैं और भी मजदूरा भी लगाते हैं?
1: अपने से भी करते हैं, मजदूर भी लगाते हैं, ऐसे परिवार हम लोग डबल होते हैं मनो 10-12 परिवार,
0: मतलब कुल मिला के मतलब सभी मिलजुल के आप लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो आपके पास साधन क्या है वो ये खेती बाड़ी करने का, बैल से करते हैं या तो आपके पास ट्रैक्टर है?
1: बैल है और ट्रैक्टर से भी जोताते हैं, तो मनो ट्रैक्टर को पैसा देते हैं, अपना ट्रैक्टर नहीं है तो बढ़ा के नहीं बताएंगे, समझे ना, यही तो मनो की। और पंप भी है पानी पटाने वाला
0: जी, आपके पास है पंप?
1: पंप है।
0: बहुत अच्छा है कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं और मेहनतशील किसान हैं। और आगे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आप धान के साथ साथ तो गोभी का भी खेती करते हैं, तो गोभी के बारे में जानना चाहेंगे कि गोभी लगाने के पहले आप कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं और कौन सा किस्म का लगा?
1: गोभी उसको जैसे कि बीजा जमीन तो जोत

0: से बना हुआ है, बीजा करने लगते हैं उसमें पाउडर डालते हैं थोड़े, तब बीजा छोड़ दें उसमें, और उस प्लास्टिक ढकते हैं, गाछ इतना बड़ा तैयार होता है तो उसको पात बना के और एक एक करके लगाते हैं, एक फीट पर, एक फीट पर, एक फीट ऐसे, एक फीट ऐसे, और लगा देते हैं तो आठ हो जाता है। उसको मैंने खुरप के DAP देते हैं, DAP और पोटास लगाते हैं, और फिर लगा दिए तो फिर आठ हो गया तो उसको कोड़ के, कुदाल कर कोड़ के फिर पास देते हैं यूरिया और DAP दे के, यही तो है। और
1: इसमें और विशेष क्या ध्यान रखना पड़ता है?
0: ध्यान इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है दवा का, मैंने उसको मैंने कि आठ फीट पर दवा उसको प्रयोग करना है। उसको पत्ता गोभी का जो होता है ना सब मीठा होता है, कीड़ा कीड़ा बहुत जोर उसपे लगता है, खाली वो दवाई उसको पर ज्यादा बनो के ध्यान देने पड़ता है
1: जी। तो इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कितना जमीन में आप लगाए पत्ता गोभी?
0: गोभी तो अभी 5 कट्ठा में लग गया है, कब से 15 कट्ठा और लगावेंगे।
1: 15 कट्ठा और
0: 5 कट्ठा पत्ता गोभी और फूल गोभी ज्यादा तो लगाते हैं। फूल गोभी, फूल गोभी का उसको रेट भी मिलता है बढ़िया, और वो जल्दी तन तैयार हो जाता है।
1: अभी फूल गोभी भी लगाए क्या?
0: हाँ हाँ, मानो कि फूल गोभी ऐसे 65-70 दिन में, 80 दिन में एकदम
1: तैयार
0: हो जाता है।
1: अभी दोनों साथ में लगाए कि अभी लगाएंगे?
0: नहीं, अभी फूल गोभी लगाए हैं, बंधा वाला गाछी हुआ है उसको भी लगावेंगे।
1: अच्छा।
0: और 2 किलो धनिया बुने हैं, धनिया जलम गया है, धनिया का पैदा उसको जोत बना दीजिए एकदम बढ़िया से, और बना के और बीजा उसको छोड़ दीजिए, कुदाल कर कोड़ के बराबर कर दीजिए, और पानी निकाल दीजिए, और पटे वाला भी साधन, बारिश हो गई तो पानी निकल जाए, और नए बारिश हो तो पटे भी उसमें। इस तरह से धनिया लगाया जाता है
1: जी।
0: और धनिया अगर 1 कट्ठा में अगर जो उपज हो जाए, रेट मिले, तो 1 कट्ठा का कीमत धनिया का है मानो कि 20,000 रुपये।
1: अगर धनिया की खेती करते तो ज्यादा मुनाफा है, लेकिन उसके लिए आपको हर तरह से मेहनत करना होगा, उसके प्रति ध्यान रखना पड़ेगा।
0: मेहनत उसमें ज्यादा नहीं, उसमें जैसे वो जलम जाने उसको खाली घास निकालने का मानो कि उपाय लगाइए, घास उसको निकालते जाइए ना तो उसको ठीक है। अच्छा, एक और है उसमें, उसको दवा निकला है, दवा मार दीजिए उस जमीन में तो घास नहीं होगा, धनिया मनो की निकलेगा, वो बहुत हल्का घास, और वो धनिया जो है उसको जड़ मोटा नहीं होता है, उसको मनो की उबार के बेचने के लिए चाहेगा ना तो फायदा कार नहीं होगा।
1: बहुत अच्छा बात बताया बिंदु जी का, आप जिस तरह से खेती बाड़ी करते हैं तो सुनने में लग रहा है बहुत ही मेहनतशील किसान है, और उम्मीद करते हैं आपका जो फसल है और भी अच्छा होगा और आमदनी भी अच्छा खासा होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आप जितना तरह का फसल लगाते हैं तो उसके अनुसार आपका आमदनी किस प्रकार से होता है, कैसे आप घर परिवार चलाते हैं?
0: आमदनी मनो की जैसा कि अच्छा से ढंग से अगर जब भगवान सुतार दे दिए तो मनो की 2-3 लाख से मनो कम नहीं है ना, और रेट अगर ये डाउन हो जाए उस तो भगवान तो।
1: जैसे उम्मीद कितना है, जैसे कि अभी जो फसल लगाए हैं, धान लगाए हैं, पत्ता गोभी, धनिया लगाए हैं और मकई लगाए हैं।
0: धान तो वो तो खाने भर खाली होता है हमारा, बड़ापन नहीं बताएंगे, 20 क्विंटल धान होता है, मगर पैसा खाली होता है हमारा टमाटर में, गोभी में, और यही धनिया में, और यही सब में, मकई में। मकई भी बेचते नहीं, मकई मनो जानवर रखे तो मकई को मनो की जानवर खाने भर होता है
1: जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बिंदु जी आप इस प्रकार से साल का बोलते हैं 3-4 लाख रुपया मेरा आमदनी हो जाता है, जिससे मेरा घर परिवार चल जाता है, जिससे आपका घर परिवार सुखीन संपन्न है। तो हमारे जो युवा जो होते हैं वो खेती बाड़ी ना करके काम, दूसरे काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं, क्या वैसे युवाओं को काम करना चाहिए, खेती बाड़ी से जुड़ना चाहिए, इसमें फायदा है कि नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: खेती में फायदा है, मगर खेती जो है, खेती और जो ताश खेलता है दोनों एक है ना, मानो आ गया तो आ गया, गया तो मानो की इसको कोई गारंटी नहीं है ना, आ गया तो चभर के और नया आया तो
1: प्रकार से खेती बाड़ी करना चाहिए। तो आपके मन में, अच्छा मन में ये मेरा सवाल आ रहा है कि आपके मन में ऐसा क्यों आया कि हम खेती बाड़ी ही करें, आप ऐसा क्यों सोचे?
0: हम तो खेती बाड़ी हम मानो की 30-35 साल से कर रहे हैं, और खेती से मानो की 2 ठोमरा लड़का है, उसको जोर लगाए बहुत की पढ़ो तो पढ़ो, आपको खाते ने 2 कट्ठा जमीन, मगर उतर गया मनो की यही बिजनेस में, वही धंधा में, वही कह, मगर खैर भगवान के देने से अभी तो मनो ठीक है।
1: और हम उम्मीद करते हैं आपका जो फसल है अच्छा होगा, और बिंदु जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने बेशकीमती समय दिए और खेती बाड़ी संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो देखिए कि कितना विशेष जानकारी है और जानकारी है धान की खेती पर विशेष जानकारी है कि धान किस प्रकार से लगावे चाहिए, देख रेख के किस प्रकार से करे चाहिए, सारा जानकारी पर देती और जो किसान हिलते हैं उनका नाम है बिंदु यादव और हमीद ने से जो बातचीत कर
1: संतोष कुमार दास हलथिन। और देखा कि आज के जो बाजार भाव है सब्जी के, सबसे बड़ा चाहिए कि हजारीबाग के सब्जी का आज हम इनके बाजार के बात करवे तो सबसे पहले कि लाल आलू तोहर जो हो 18 से 20 रुपये किलो, सफेद आलू तोहर हो से मतलब 14 से 15 रुपये किलो, प्याज 25 से 30 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 60 से 70 रुपये प्रति किलो, पत्ता गोभी 30 से 35 रुपये प्रति किलो, भिंडी 20 से 25 रुपये किलो, पटल 20 से 25 रुपये किलो, नेनुआ तोहर हो 15 से 20 रुपये प्रति किलो, कद्दू तोहर जो हो 15 से 20 रुपये प्रति किलो, हरा मिर्च 60 से 70 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च 80 से 90 रुपये प्रति किलो, गाजर तोहर जो हो से 20 से 25 रुपये प्रति किलो, बीट 30 से 35 रुपये प्रति किलो, सेम तुहर 70 से 80 रुपये प्रति किलो, बीन्स जे हो तुहर मतलब 30 से 40 रुपये प्रति किलो, मूली 15 से 20 रुपये प्रति किलो, धनिया पत्ता 150 से 200 रुपये प्रति किलो, अदरक 110 से 120 रुपये प्रति किलो, खीरा तुहर जो 15 से 20 रुपये प्रति किलो, टमाटर 25 से 30 रुपये प्रति किलो, लाल साग 15 से 20 रुपये किलो, पालक साग जो है आज के बाजार भाव है पालक साग के 15 से 20 रुपया प्रति किलो।
0: और वहीं देखा कि आज के अगर मौसम के बारे में बता दिए तो आज के जो अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस और कल के जो मौसम विभाग के अनुसार जो बतावल गया है कि 31 डिग्री सेल्सियस कल के तापमान रह सको है और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सको है। और वहीं अगर हम आर्द्रता की बात करिए तो 75% आर्द्रता रहने की संभावना है।
1: तो
0: घड़ी देने देखो ये तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमनी के जाए के बेरा हो गया है तो अगर जब भी वे इसी प्रकार से नवा नवा जानकारी लेके आवे ताकि किसान भाई बहन के हर प्रकार के जानकारी सुने में ताकि उनके लाभ मिल सके। तो ये जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से हमारा संतोष भाई के
1: और वीरेंद्र की अनुमति दा जोहार।

श्रोता भी सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बारी में सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है, प्रणाम है। आज हमारे साथ आए हैं संतोष भाई, तोहरो जोहार प्रणाम।
1: तोहरो जोहार प्रणाम वीरेंद्र भाई, और साथ ही साथ खेती बारी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत करो। साथ ही संतोष के दिन से जोहार प्रणाम, और उम्मीद करे कि हम के किसान भाई बहन कुशल मंगल होतीन और अपन खेती बाड़ी में जो से जोरों शोर से लगल होतीन और अपन खास करके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देतीन।
0: और देखा कि आज हमें बहुत कुछ लेकर आवले। सबसे पहले आज चर्चा करबे किसान उत्पादन संगठन FPO के योजना के बारे में। उसके बाद ओकर बाद तोहरा हमें जरूर संदेश भी सुनेबो, ओकर बाद एक गीत मनोरंजन के लिए सुनेबो, और फिर तोहरा एक फिर चर्चा करो मतलब बरसात में दुधारू पशु के विशेष देखभाल, और ओकर बाद एक जानकारी लेकर आई हो फलदार वृक्ष अमृत के बारे में हम चर्चा करबे, जे डॉक्टर साहब बतबैत हथिन, और धान के रोपाई के बाद के का जरूर ओकर पर हम चर्चा करबे। तो सबसे पहले किसान उत्पादन संगठन FPO

0: यानी कि कह मतलब एक प्रकार के जैसे कि एनजीओ यानी कि किसान के एक एनजीओ के रूप में बनावल जाए है वहाँ पर, और ओकर में कहे कि आपन उत्पाद के एक जगह रह के एक मानक रेट में ओकरा बेचल जाए है सबसे पहला। और एकर में कि सरकार की एक मंशा है कि किसान एक संगठन बनेथिन, समूह बनेथिन, आ समूह बना के अपन जैसे एक ऐप है कृषि ऐप ओकरा लोड करथिन, हर बाजार के ओकरा जानकारी रखथिन और अपन उत्पादन के भी जानकारी ओकर में शेयर करथिन। ओकर में शेयर करे से का हुआ है कि पूरे तोहर बाजार हो हर जगह के, तोहरा बाजार के आदमी जानतो और उचित डिमांड जब हो तो तोहरा अच्छा रेट से बिकतो है ना। तो ये सब बहुत कुछ है।
1: और देखे एक बहुत अच्छा बात बतेला रकम। सबसे बड़ी बात है जो एफपीओ है, जो किसान उत्पाद संगठन है, कर में किसान के एक कानूनी समूह हो, एक
0: हाँ
1: कानूनी समूह है अकर में का हो कि जकर में सदस्य खुद मालिक होते।
0: हाँ
1: सबसे बड़ी बात है कि अकर में जो सदस्य होते खुद मालिक होते। और अकर में देखा कि एक बात और है कि हमने के किसान भाई बहन बीज सस्ता में खरीद के फसल के उत्पादन करके अच्छा बाजार अच्छा दाम में बाजार में बेच सको थी। अकर में सबसे बड़ी जो मुख्य लाभ देखे मिलो है कि सामूहिक शक्ति, मतलब कि किसान के सौदेबाजी की ताकत बढ़ो है और कम लागत, मतलब है कि खाद बीज और दवाएं जो थोक भाव में सस्ती में भी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि बेहतर बाजार, मतलब कि बिचौलिए से मुक्ति और सीधे सही दाम पर फसल की बिक्री भी करल जाए। तो देखा कि अकर से बहुत सारा फायदा है हमने के किसान भाई बहन के। और अगर मैं एक चीज और देखिए मित्र, कार्य संरचना के बारे में अगर हम बात करिए तो उत्पादन से बाजार तक में के अगर हम बात करिए तो खेती में खेती हो गलो, फसल कटाई हो गलो, ग्रेडिंग हो गलो, पैकेजिंग हो गलो और प्रोसेसिंग के भी काम योजना के तहत करल जाए, साथ ही पंजीकरण भी करल जाए। ये अगर मैं देखा कि कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति के तहत रजिस्टर हुआ है। और संचालन का अगर हम बात करिए तो किसानों द्वारा चुने गए बोर्ड और समिति के जरिए चलावल जाए। तो देखो बहुत अच्छा ये एफपीओ है जकर से किसान भाई बहन के सबसे बड़ी बात है कि अपन खुद के मालिक होथिन और कोई भी बीज के सस्ता में खरीद के अच्छा दामों में फसल बेचो थीन। और सबसे बड़ी बात है कि बाजार उपलब्ध करावल जा है ताकि किसान भाई बहन के बिचौलिया लोग जो बीच में फसल कम दाम में खरीद के अपन मुनाफा कमाथिन वो सब दूर हो जाते, डायरेक्ट किसान भाई बहन अपन अच्छा बाजार में जाकर फसल के बेच के ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमा सको थीन।
0: हाँ ये बहुत अच्छा तू बात बतेला है। कहे कि देखा ये चर्चा हम पहले भी कर लियो भाई कि अपन स्वयं किसान मालिक हो थी कर अपन उत्पाद के, और इनका हर इंटरनेशनल मार्केट से भी जोड़ जाए बहुत तरह से कर में फायदा। तो बिना देर कुबेर कर ले एक जरूर संदेश और एक गीत भी सुनो ये।
1: जरूरी संदेश सुन ली, ओकर बाद हमने भेंटवार्ता के बाद जैसे तू बतेला कि भेंटवार्ता भी ले लिया है तो जरूरी संदेश के बाद हमने एक अमरूद की खेती के बारे में एक भेंटवार्ता है जकर बतेलते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह और हमने से जब बातचीत कर देते हैं वीरेंद्र साहू। तो हमने भेंटवार्ता सुनने से पहले हमने सुनो एक जरूरी संदेश, ओकर बाद हमने जानवे भेंटवार्ता के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: किसान मित्रों, हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, खेती किसान में बहुत तरह का अंग होता है जिसमें कि आज फलदार वृक्ष पौधों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य तौर से। तो आज हम आपको लिए चलेंगे किसान भाइयों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड गौरिया कर्मा हजारीबाग में स्थित है। और आज जो हमारे साथ बात करेंगे एक वैज्ञानिक है डॉक्टर नरेंद्र सिंह। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है।
3: जी नमस्कार, जोहार
0: डॉक्टर साहब। हम जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ फलदार वृक्ष जैसे कि आम, अमरूद, कटहर, बढ़हर, लीची, बहुत तरह के फलदार वृक्ष यहाँ देखा जाता है। बैर है, कनौदा है, मतलब कहा जाए कि हर तरह से झारखंड में हर तरह का फलदार वृक्ष लगभग सुटेबल भी है। लेकिन आज जिसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो मार्केट में अमरूद जो देखते हैं आधा के जी बिकते हुए है ना, तो तो उस अमरूद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अमरूद

0: जो होगा उसके लिए कैसा मिट्टी होना चाहिए डॉक्टर साहब, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें।
1: जो झारखंड की जो जलवायु और जो यहाँ की मृदा परिस्थिति है, वो लगभग हर प्रकार के फल जो फलदार पौधे हैं उनकी वृद्धि और उनके उत्पादन के लिए उपयुक्त है। और अमरुद जो है यहाँ की जो जलवायु और जो मिट्टी की जो स्थिति है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन जो इसमें हमारे जो इस क्षेत्र की जो जलवायु और मिट्टी है उसमें केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जो गोबर का पुराना खाद है वो पौधे का गड्ढा बनाते टाइम भी उसमें थोड़ा सा अच्छे से लगाया जाए और प्रतिवर्ष कम से कम 8 से 10 किलो उसको दिया जाए। यदि गोबर की खाद भी यदि किसान समुचित तरीके से डालता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व की हो सकती हैं।
0: तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे 1 एकड़ में अमरूद का हम खेती करना चाहें यानी कि 100 डिसमिल में, तो उसमें कितना अमरूद का पौधा हमारा लगेगा और उसको हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ हवा का भी प्रकोप जो होता है पौधा अगर हम उल्टा तरीका से लगाए तो वो भी हमको नुकसान होता है, तो उससे हम कैसे बचेंगे और अच्छा मतलब पौधा हमारा कैसे लगेगा, और कुछ इसका प्रजाति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अमरूद की।
1: तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रजाति के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारे भारत की जो पुरानी जो किस्में हैं उसमें एक अलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ 49, जिसको सरदार गुआवा भी कहते हैं, सरदार अमरूद, ये दोनों बहुत ही प्रचलित थे जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई स्थानों पर उनको पहले से किसानों द्वारा लगाया जाता था। लेकिन उसके बाद कई हमारे जो सरकारी संस्थान हैं उनके द्वारा कई उन्नत किस्में भी विकसित की गई, जिसमें जो मुख्य जो लक्षण रहते हैं, एक तो उसका जो बीज है वो कम कठोरता वाला रहता है और जो उसका गुदा है उसका कलर लाल या गुलाबी रंग का होता है, जिसको किसानों द्वारा और जो मार्केट में है अच्छा पसंद किया जाता है। तो इसके लिए जो मुख्य किस्में निकली हैं, एक अभी नई अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा एक पूसा आरुषि नाम से एक किस्म निकली है और एक पूसा प्रतीक्षा निकली है। इसके अलावा बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा अर्का किरण, अर्का रश्मि, मृदुला, ये सारी किस्में विकसित की गई है। ये सारी जो किस्में हैं पूर्ववर्ती किस्मों के लगभग बराबर ही फल का साइज होता है। जो आप कह रहे हैं कि बड़ी साइज का जो अमरूद जो है बाजार में मिलता है, वो जो थाई जो किस्म है जो बाहर से विकसित करके हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई उनका है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना दूरी रखें, कैसे उसका प्लांटिंग करना चाहिए। तो इस मामले में जो अमरूद की जितनी भी हमारे यहाँ पे जित किस्में उपलब्ध हैं उनके लिए करीब 3 बाई 6 मीटर, 3 मीटर × 6 मीटर या फिर 3 × 5 मीटर, ये दूरी बिल्कुल पर्याप्त है। इससे कम दूरी पे भी अमरूद को लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ समय 6 से 7 साल के बाद जब पौधा बड़ा होने लगता है तो एक दूसरे से में वो उलझना शुरू करता है, जिससे उसके अंदर बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है और उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है किसान मित्रों के लिए कि 3 × 6 मीटर पे यदि पौधे को लगाया जाए, और लगाने का जो सबसे उपयुक्त समय है बारिश का समय है, और लगाने से करीब 1 महीना पहले किसान मित्र जो क्या करे, 3 बाई 3 फीट का गड्ढा तैयार करे, उसको 8 से 10 दिन धूप में खुला छोड़े, जिससे कि अंदर उसके अंदर के कीड़े, जीव जीवाणु, जो दिया दीमक ये हैं ये सब मर जाएं। उसके बाद उसमें करीब 10 से 15 किलो गोबर की खाद और आधा किलो DAP, इसको मिक्स करके उसको गड्ढे को भर दें और जैसे ही बारिश हो उसके साथ उसको पौधे का रोपाई करें, तो एक बहुत ही अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। और मेरा ये मानना है कि उससे 50% तक आगे आने वाले पौधे की जो समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा।
0: चाहते हैं अमरूद का लगाने का सही समय क्या होता है?
1: जी, अमरूद का लगाने का सही समय जैसे मैंने बताया कि बारिश का समय रहता है, क्योंकि पौधा लगने के तुरंत बाद जो 1 से 1.5 महीना तक हमारे यहाँ की जलवायु में एक तो वातावरण में आर्द्रता या नमी बहुत ज़्यादा रहती है और लगातार थोड़े थोड़े समय के बाद बारिश चलती रहती है, तो उससे क्या पौधा अपना अच्छे से जड़ पकड़ लेता है। लेकिन यदि किसी किसान के पास समुचित व्यवस्था हो सिंचाई की तो फरवरी मार्च में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी यह है कि जैसे गर्मी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो पौधे की जड़ों को स्ट्रेस के कारण शुरुआती अवस्था में वो झेल नहीं पाता है, सहनशीलता उसकी कम रहती है। तो हमारी तरफ से सलाह यही रहेगा कि बारिश का सीजन जो है वो हमेशा उपयुक्त रहता है,
0: यानी कि 15 जून के बाद से किसान अगर लगाना चाहे तो अच्छा होगा।
1: जी,
0: हमारे यहाँ खासकर झारखंड में।
1: जी बिल्कुल ठीक।
0: अमरूद जब लगाने के बाद उसमें कितने दिनों बाद इसका पहला निकाई गुड़ाई किसान को करना चाहिए?
1: जी देखिए, अमरूद जैसे बाकी फलदार जो फसलें हैं उन्हीं की तरह ये बहुवर्षीय फसल है, तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्टिकुलर किसी सीजन में, लेकिन जनरली बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम घास वगैरह ज्यादा रहती है, और जो घास वगैरह जो नुकसान करती है, जो सबसे अधिक नुकसान करने वाली घास होती है जो पौधे के जड़ के आसपास निकलती है, तो किसान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम बारिश का समय में और फरवरी मार्च के टाइम पे वसंत ऋतु में उसके जो जड़ के आसपास का जो है क्षेत्र उसको साफ करके वहां पे थाला अच्छे से बनाया जाए, जिससे वहाँ जो पौधे को समुचित पानी भी मिले और समय समय पे घास जो है वहाँ से निकला। उसके अलावा मल्चिंग जिसको हम पलवार कहते हैं, पुरानी सूखी घास पत्तियां ये सब भी यदि जड़ों के पास में इकट्ठा की जाएगी तो जो खरपतवार है उसकी वृद्धि कम होगी और जो जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी अच्छा।
0: अभी कहीं कहीं अमरूद में देख कर रहे हैं किसान मतलब डायरेक्ट प्लास्टिक का मल्च कर दे रहा है, ड्रिप लगा दे रहे हैं, क्या उसमें ज्यादा सुटेबल होगा?
1: जी, जो प्लास्टिक मल्च है वो उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हमारी जो सूखी पत्तों की ऑर्गेनिक पलवार काम करती है, लेकिन उसका जो थोड़ा जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है और 3 साल 4 साल के बाद जब वो प्लास्टिक काम लायक नहीं रहता तो उसका निस्तारण भी एक कहीं कहीं समस्या रहती है। तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए चूंकि यहाँ पे धान का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है, तो पुआल रहता है जिसका हम कहीं और जगह उपयोग नहीं कर पाए, खासकर धान का, उसको इसमें उपयोग किया जा सकता है या फिर कोई सूखे पत्ते हैं तो उनका उपयोग इसमें किया जा सकता है।
0: अमरूद लगाने के बाद कितने दिनों बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है?
1: अमरूद में पहली बार जो फूल आपको देखने को मिलेंगे वो लगभग दूसरे साल से भी देखने में मिल सकता है, लेकिन तीसरे चौथे साल से किसान उसमें से उत्पादन ले सकता है। हमारी किसानों को सलाह रहती है कि कम से कम 3 साल तक उसमें से उत्पादन न लिया जाए जिससे कि पौधे की जड़ें कमजोर न रहे। एक इसमें विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि अमरूद के पौधे का ये गुण होता है कि यदि उसको लगातार थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहेगा तो उसमें पूरे साल भर थोड़े थोड़े फूल आते रहेंगे, कुछ फल लगते रहेंगे, और यदि बारिश के टाइम पे यदि वही फल पकने को तैयार है तो उसमें कीड़ा लग जाता है जिसको हम फल मक्खी कहते हैं, लट का काम करती हो, तो ये समस्या बहुत मुख्य हो जाती है। तो इसीलिए किसानों को हम सलाह देते हैं कि 12 महीने लगातार थोड़े थोड़े फल आने से बेहतर है कि एक किसी पर्टिकुलर सीजन में अच्छा उत्पादन लिया जाए। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लिए जो सुटेबल है कि बारिश के समय में, जैसे बारिश शुरू होता है तो बारिश के समय में नेचुरली उस टाइम अच्छा खासा अपने यहाँ पे वर्षापात रहता है, जल के संसाधन है, तो बारिश के टाइम पे यदि उसमें फूल आएंगे तो करीब 120-130 दिन के बाद वो पकता है। तो सर्दी के टाइम पे जो अमरूद पकता है उसमें फल मक्खी का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम रहेगा और उसमें जो किसानों को फल की साइज भी अच्छी मिलेगी क्योंकि पूरी जो ग्रोथ है फल की उस दौरान पौधे को समुचित पानी और जो पोषक तत्व है वो मिलते हैं। तो इसी के लिए, इसके लिए दो ही रिकमेंडेशन रहता है हमारा कि मई और अप्रैल 15 तारीख से मई तक उसका पानी बिल्कुल रोक दिया जाए पौधे के पत्ते पीले होने तक, और मई लास्ट में जून 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में उसको खाद देके छोड़ दिया जाए, जैसे ही बारिश होगी उसमें नए फूल आना शुरू होंगे।
0: देखिए अमरूद में सबसे बड़ी चीज होता है कि प्रूनिंग जो बोलता है, डाली कटिंग, वो कब किसान को करना चाहिए?
1: प्रूनिंग के बारे में ऐसा है कि अमरूद का एक गुण है कि इसमें जो फूल आता है वो नई जो डाली निकलती है, जो नई कोंपल निकलती है उसमें आता है, तो हर साल एक जो इसकी मुख्य डाली होती है वो अपना आगे की तरफ शीर्ष की तरफ प्रगति करती जाती है और जो साइड से छोटी छोटी जो ब्रांचेज निकलती है वो लगभग सूखती जाती है। तो जो सीधा आगे जो ब्रांच बढ़ रही होती है मेन ब्रांच, उसको कंट्रोल करना जरूरी रहता है। कभी 25% हम रिकमेंड करते हैं कि इसको बसंत ऋतु में उसको काटा जाए जिससे कि उसकी जो नई ग्रोथ है अगली बारिश के सीजन में आ जाए।
0: अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हम जब हमारे जब उत्पादन होता है उसको हम कैसे पैकिंग करेंगे ताकि हमारा बाजार में अच्छा भाव।
1: अमरूद का कई जगह किसान कई बार क्या करते हैं कि एकदम पूरा पीला पड़ जाता है फल पौधे के ऊपर, तभी वो उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन अमरूद में यह है कि जैसे ही आपका गहरे हरे से एक फीका हरा रंग जैसे परिवर्तित होने लग जाता है और इसका भरपूर साइज ले लेता है, उस टाइम यदि किसान अमरूद को हार्वेस्ट करके और क्रेट में पैक कर लेगा तो मार्केट तक जाते जाते वो समुचित रूप से पीला रंग ले लेगा, तो उसको कुछ अच्छे से निस्तारण किया जा सकता है। उसके अलावा यदि 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि उसका भंडारण किया जाए तो अधिक समय तक उसका भंडारण किया जाए।
0: युवा साथी को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से, जैसे जो अभी बेरोजगार है, वो फलदार वृक्ष कैसे आए, कैसे आए यहाँ से जुड़े?
1: पूर्वी भारत की जो जलवायु और मैं कहूंगा कि जो भौगोलिक जो स्थिति है वो पठारी क्षेत्र है, तो जहाँ पे जल के जो संसाधन है वो बहुत ही कम है, जो इरिगेशन सिंचाई के संसाधन, क्योंकि बारिश का सीजन में मुख्यतः बारिश होता है, तो इसके लिए बहुवर्षीय फसलों जैसे अमरूद की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। क्योंकि अमरूद न केवल फ्रेश मार्केट में जाता है, यदि इसका प्रोसेसिंग सेक्टर को कैच किया जाए तो ये एक युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा नया सपना साकार करने के लिए अच्छा रास्ता हो सकता है। क्योंकि अमरूद का आपने देखा होगा जेली आता है मार्केट में, वो बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम जेली बनता है। इसके अलावा भी अमरूद के कई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जो अमरूद का जेली इवन अमरूद का जूस भी आजकल डिब्बा बंद आता है मार्केट में, यदि इस सेक्टर को भी टैप किया जाए तो न केवल हमारा जो लोकल मार्केट है, प्रोसेसिंग मार्केट को भी अच्छे से पकड़ा जाए।
0: तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: तो श्रोता, अभी हमें सुनला बड़ा बढ़िया एक गीत, और अब हमें चर्चा करबे कि मतलब दुधारू पशु के विशेष देखभाल बरसात के मौसम में, यानी कि कोई भी अगर हमें आदमी अगर गाय रखो ये, तीन बात के हमेशा ध्यान रखे के चाहिए कोई भी जानवर। सबसे पहला कि ओकर जो मतलब आवाज प्रबंधन जो हुआ है ओरा हवादार होना चाहिए। दूसरा में सबसे बड़ा बात यह है कि हवादार के साथ में अगर हम जो ओकरा फर्श बने दिए हैं ओकरा हल्का ढलुआ होना चाहिए, मतलब एक साइड से 2 इंच एक तरफ डाउन होना चाहिए ताकि पर पेशाब करे तो ताकि बह के किनारे आ जाए, है ना। दूसरा बात यह है कि ओकरा सफाई के ज्यादा बरसात के मौसम में ध्यान दे के चाहिए कि वहाँ जितना साफ और जितना सूखल रहतो तो ओकर में जो पैर में खुरहा रोग लगे डर से वो ना लगतो, है ना। एकर अलावे जैसे कि बहुत तरह से वायरल डिजिट जो हुआ वो सब बीमारी ना लगतो, रूम के घर के साफ सुथरा रखे के चाहिए। और जैसे बरसात के मौसम जब चालू हुए टीकाकरण बहुत जरूरी है पशु में। टीकाकरण होवे से का हो कि बीमारी के पीछे एकदम मतलब रोग क्षमता रहे जेकर से रुक जाए। और रह गए बात की खास करके दुधारू पशु के, तो ओकरा सबसे पहले बरसात के मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान दे के चाहिए। बारिश में तू जानवर खोल दिला या बांध दिला बाहर में चलते, बारिश के चलते वो ना चले जाकर चलते तुम्हारा दूध कम दे, तो ओकरा ये कोशिश करे चाहिए कि अगर कम चले तो भाई थोड़ा कुटी के मात्रा ओकर में चोकर के मात्रा हल्का बढ़ा के, है ना। और जैसे घट्ठा जे भी देहा तू मकई के दर्रा वगैरह चुन्नी खली से थोड़ा बढ़ा के ओकरा दियल करा बरसात में, तो ओकर से कहा दूध तुम्हारा एक लेवल से बराबर कर दो। और दूध के जो गाढ़ापन है वो भी मेंटेन कर दो। बहुत किसान हथिन घास देते हैं उनका दूध देखवन अगर डायरी में बेचे गल तू तो 27 से 28 रुपया रेट उठ जा। जैसे बहुत ऐसा कुछ घास है बरसात में घास जेकर से दूध है सिर्फ पेट भर है, तो भाई हमें कोशिश करके चाहिए दूध ज्यादा ज्यादा कैसे उत्पादन हो ओकर पर विशेष ध्यान दिए के चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बतेला कहे, मतलब अगर पशुपालन करो थी तो हर तरह से ध्यान रखे पड़ते अपन गोरु डांगर के। और सबसे बड़ी बात है बरसात के दिन में थोड़ा सा परेशानी हो है बीमारी संबंधित रख रखाव संबंधित, तो ओकर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा गौशाला बनाना चाहिए कि हर मौसम आधारित हो, सुरक्षित हो, चाहे बरसात हो गर्मी हो ठंडा हो, हर मौसम के अनुरूप के गौशाला होना चाहिए ताकि हमने के पशुपालन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो हमने की उम्मीद है कि कार्यक्रम में जो भी बात हमने बतेली सब जरूर सुन ले होती ना, और जरूर कोशिश करती कि ये सब अपने थीन ताकि होवेला जो कमी है या तो हानि है ओकरा से बचल जा सको है। और इसी प्रकार जब भी आवे तो नवा नवा जानकारी लेके आवे ताकि किसान भाई बहन के हर प्रकार के जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए के कोशिश रहो और देवे। कह के देखा कि हमारे कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना निकलो है अपन किसान भाई बहन के कोई बताओ ये साझा करो ये, तो देखा कि अब जब भी आवे तो इसी प्रकार से नवा नवा जानकारी के साथ आवे ताकि किसान भाई बहन के हर प्रकार के जानकारी सुना सकबे। तो देखा कि अब गाड़ी के देने देखो ये तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से भी विदा लिए के समय आ चुकले है। तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से अपन भाई संतोष के
0: और वीरेंद्र के अनुमति दा जोहार।

0: श्रोता भी सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम किरकेट्टा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। हजारीबाग जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित मासिक लोक अदालत में आपसी सहमति से 90 मामलों का निपटारा किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा की देखरेख में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 24,92,908 रुपए के दावों का समझौता हुआ। त्वरित सुनवाई के लिए 8 बेंच गठित की गई थी। गोड्डा में जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से आज जनसंवाद सह ऑपरेशन मुस्कान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 22 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। रामगढ़ पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 13 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन तथा अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रम 2028 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कल सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहने का आदेश जारी किया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है श्रमिक भाई बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम मेहनत कश।

मेहनत कश कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रमिक भाई बहनों को सूरज का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमें खुशी अनुभव होती है जब हमारा कामकाज ठीक से चल रहा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, अगर जो काम हम कर रहे हैं उसमें किसी तरह के व्यवधान या परेशानी आती है तो हमारी खुशी चली जाती है। और हम खुश वास्तव में तब होते हैं जब सब कुछ व्यवस्थित होता है। तो जीवन का व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कामकाज ठीक से हो इसमें से कुछ बातों का तो ध्यान रखना होता है। जैसे अपने कार्य व्यापार के प्रति हमारे भीतर ईमानदारी हो, हमें कठोर मेहनत में विश्वास हो और हम अपना कार्य सही तरीके से सही रीति नीति से करते हैं, तब जाकर हम सफल होते हैं और अपने

और श्रमिक भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमें कुछ जैसे अपने कार्य व्यापार से संबंधित तो जानकारियां जुटानी ही चाहिए, और कुछ ऐसे भी प्रयास करने चाहिए कि हम जो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है, उन सब के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें जरूर इकट्ठा करनी चाहिए। और अक्सर जिसके पास जानकारी होती है, लोग उनसे पूछने जाते हैं कि अच्छा इस बारे में बताइए कि इसमें क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इस व्यक्ति के पास इसकी जानकारी हो तो हम अपने व्यक्तित्व को इस अनुपात खुद भी ढाल सकते हैं। हमारे भीतर अगर जानकारियाँ ज़्यादा होगी, अगर हम ज़्यादा सजग होंगे, सहज होंगे, और जो जहाँ से जानकारियाँ मिलती है उसे लेते रहेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व भी इस रूप में ढलता जाएगा। तो आज की इस बातचीत में एक और सरकारी योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में। लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक खूबसूरत से गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
6: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्य वंदना कार्ड बनाने का। 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्य वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रमिक भाई बहनों, हम चर्चा कर रहे थे 15 सूत्रीय, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में। भारत सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिसमें हम आपको बता दें कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन आते हैं, इनके कल्याण के लिए शुरू की गई यह एक व्यापक योजना है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन्हें सरकारी योजनाओं का समान लाभ दिलाना और इनका सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसमें शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाना, इसमें आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए उसको बढ़ाना, उसको सुनिश्चित करना, जीवन स्तर में सुधार और सांप्रदायिक सौहार्द और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने की जो बात आती है, तो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों ICDS का समुचित विस्तार किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक बच्चों तक पहुँचाना भी इसका एक लक्ष्य है। मदरसों के आधुनिकीकरण और उर्दू भाषा के शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट का मेंस आधारित छात्रवृत्तियों का प्रावधान है। और जैसे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के जब बात आती है, तो इसके लिए कई तरह के जैसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की जो सुविधाएं हैं वो सारी दी जाती है। जीवन स्तर में सुधार, यानी जो इनका जो कहे कि गुणवत्ता है जीवन स्तर का, उसमें सुधार का प्रयास किया जाता है। शहरी और ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सुरक्षित पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की पहुँच आदि बढ़ाना, सांप्रदायिक सौहार्द और सुरक्षा भी इसमें सुनिश्चित करना है। सांप्रदायिक हिंसा और घटनाओं की रोकथाम, सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देना, जैसे कई कार्यक्रम हैं। और ये प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये अपने आप में एक बेहतरीन समाज गढ़ने की दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम है। तो ये सारी जानकारियाँ निश्चित रूप से, अगर आप सुन रहे हैं, आप श्रमिक भाई बहन, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप इससे संबंधित पात्रता

0: सकते हैं तो आपका इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहरहाल इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए फिर से देते हैं विराम, आगे बातचीत आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए एक बातचीत लेकर आए हैं, एक केक मेकिंग रोजगार का बढ़िया जरिया। इस बारे में जानकारी दे रही हैं सृष्टि कमल और इनसे बातचीत की है अशोक कुमार ने, तो आइए इस बातचीत को सुनते हैं।
1: श्रोताओं, आज के मेहनत कश कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक बेकरी व्यवसाय से जुड़ी शख्सियत सृष्टि कमल जी को। तो सृष्टि जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार मुखातिब है, बहुत बहुत स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: मैम। ऐसा है कि आजकल स्वरोजगार की ओर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है, युवा वर्ग भी देख रहे हैं कि अगर नौकरी मिलना संभव नहीं है तो स्वरोजगार एक ऐसा है, बहुत सारे विकल्प हैं रोजगार की अगर बात करते हैं तो आसपास। इसी में एक बेकरी व्यवसाय जो है काफी बेहतर, थोड़ा बहुत पूंजी लगा के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें इस व्यवसाय से आप जुड़ी हुई हैं, उनको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये व्यवसाय की शुरुआत किस प्रकार से होती है। खास तौर से आप इसमें केक बनाती हैं, बेकरी में बहुत सारी चीज आ जाते हैं लेकिन आप केक बनाती हैं, तो पहले ये बताइए कि इस कार्य को आप कितने वक्त से कर रही हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ?
2: तो ये 2 साल पहले की बात है। हाँ। उस वक्त पे कोविड आया था और मैं अपने 3rd ईयर में थी कॉलेज में। तो हमारे कैंपसेस चल रहे थे, हमारी जॉब्स भी लग गई थी, बट ज्वाइनिंग से जस्ट कुछ टाइम पहले ही कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया।
1: अच्छा।
2: एक साल हम लोग पहले एक हफ्ते से, वो एक महीना हुआ, फिर 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, ऐसा करके 1 साल हो गया। फिर धीरे धीरे सारी कंपनीज ने भी अपनी जॉब्स वापस लेनी शुरू कर दी। तो फिर और उस टाइम पे जॉब्स भी नहीं थे होटल्स, क्योंकि होटल सारे लॉस में चल रहे थे बहुत ज्यादा। तो उस वक्त पे और कहीं जा भी नहीं सकते थे, बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। तो फिर ठीक है, क्या करें। और मेरा बर्थडे भी था तो मैंने अपने बर्थडे पे बेसिकली केक बनाया था।
1: अच्छा,
2: तो
1: अच्छा,
2: सबको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आप बना के देखो कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो फिर बनाना शुरू किया, तो पहले महीने में बस 2 ऑर्डर्स थे, फिर वो धीरे धीरे 4 हुए, 6 हुए, फिर पता नहीं लगा कि कब पर दिन 6 ऑर्डर्स आने लगे, जो मतलब ये मैक्सिमम था कि 6 ऑर्डर्स ही हम लेते थे, उसके आगे हम रोक देते ऑर्डर्स लेना बिल्कुल ही। तो अभी ऐसा ही चल रहा है। अच्छा,
1: बस उस प्रकार से आपकी शुरुआत हो गई।
2: हाँ।
1: चलिए बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि ये जो 6 ऑर्डर आप जैसे इस काम को स्वयं करती हैं या फिर घर के लोग हाथ इसमें बटाते हैं, कोई स्टाफ वगैरह भी रखती हैं?
2: अभी तो फिलहाल स्टाफ तो नहीं रखा है मैंने। अच्छा। अभी वो है कि हाँ, जैसे सारे बर्तन वगैरह का काम हो गया या कभी कोई बॉक्सेस बनाने केक का, तो उसमें मम्मी हेल्प कर देती हैं। अदरवाइज क्योंकि केक वगैरह का काम का तो मेरे को ही आइडिया, वैसे हाथ बैठा हुआ, वो नहीं कर सकते और कोई, अगर उनका प्रैक्टिस नहीं है तो बाकी काम तो मेरे को ही करना पड़ता है फिलहाल कोई, क्योंकि अभी कोई भी स्टाफ नहीं है, अभी अकेले हैंडल करना होता है सब कुछ।
1: तो काफी मेहनत। और वैसे अभी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है?
2: अभी मेरे मास्टर्स बस खत्म होने वाले हैं।
1: अच्छा,
2: IHM पूसा से, और मैंने ग्रेजुएशन करी थी होटल मैनेजमेंट में ही चंडीगढ़ से, IHM चंडीगढ़ से।
1: अच्छा, तो जो जॉब आपकी लगी थी वो होटल मैनेजमेंट में ही जॉब लगी थी या कहीं और लगी?
2: हाँ जी, ओबेरॉय में लगी थी।
1: अच्छा, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको उसका अफसोस होगा, क्योंकि आपने उसको रिकवर किया इस व्यवसाय को स्टार्ट करके।
2: हाँ, बहुत। हाँ, एक एक्सपोजर मिला, पता चला कि हाँ, यहाँ पे भी मेरा अच्छा इंटरेस्ट है
1: जी।
2: और पता चला कि हाँ, मेरे इंटरेस्ट से अभी तक हम यहाँ इतना आगे तक पहुँच सके।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए आपने पूंजी कितना इन्वेस्ट किया? अभी
2: स्टार्टिंग में तो 800 रुपए ही लगाए थे घर पे। अच्छा, पहले से अभी का ही
1: बहुत मिनिमम अमाउंट था।
2: तो सर वक्त के हाँ, 2 केक का डब्बा ले आया, 2 केक बेस लाया, 1 व्हिप क्रीम का डब्बा ले आया था, ऐसे करके कि हाँ, 2-3 केक के लायक का सामान लेके आया कि पहले देखते रिस्पॉन्स कैसा है। फिर 3 केक से जो पैसा है उससे और सामान आया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर अभी है कि पहले से अवन तो था ही, फिर फ्रिज लिया, फिर ये मतलब इक्विपमेंट्स, फिर मतलब जितने भी केक मोल्ड्स वगैरह वगैरह, फिर उसमें बहुत तरीके के टाइप्स आ गए। तो अब है कि हाँ, अब पहले से बहुत बेहतर कलेक्शन है मेरे पास।
1: अच्छा मैम, ये बताइए कि इक्विपमेंट की आपने बात की, सामग्री की आपने बात की, एक्चुअली कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता इसमें पड़ती है एक केक के लिए? जो बाहर से जैसे सेब आते हैं तो हर सेब का एक डब्बा होता है, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा?
2: देखिए, अवन तो बेसिक है, आप कुकर में केक बनाना, अवन में केक बनाना बहुत डिफरेंस होता है।
1: अच्छा।
2: और
3: कहाँ बनता है?
2: अवन में, क्योंकि अवन में आपका चारों तरफ से हीट पड़ता है केक पे, तो वो चारों तरफ से बेक होता है। कुकर में सिर्फ नीचे से हीट पड़ता है जहाँ पे आंच जल रहा है।

0: तो उसमें क्या था कि नीचे से जलने का चांस है, ऊपर से ढंग से पकता नहीं है, फिर आप बार बार कुकर खोल के देखते हैं कि वो पक्का है कि नहीं, फिर आपको फ्रिज भी वैसा चाहिए केक के लिए, घर का फ्रिज नॉर्मल फ्रिज नहीं, मतलब क्योंकि उसमें आपका फ्रॉस्ट होता है तो वो केक को थोड़ा मॉइस्ट कर देता है उसका क्रीम को, तो ट्रैवल करते वक्त केक टूटने का चांसेस बहुत रहता है। तो फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर, स्टैंड मिक्सर और इस तरीके के इक्विपमेंट्स होने जरूरी है अगर आपको बेकरी, मतलब अगर थोड़ा प्रॉपर करना है तो।
1: आमतौर पर मान के चलिए एक आप केक बना रही है तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या क्या सामग्री उसमें लगेगा बनाने के लिए।
0: तो पहले तो मतलब आपका जो स्पॉन्ज है वही मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब हो जाता है। फिर व्हिप क्रीम हो गया, आपको अगर चॉकलेट केक बनाना तो आपको गनाश बनाना होता है जो आपका क्रीम और चॉकलेट को गर्म करके बनाया जाता है। वैसे ही जैसे जैसे फ्लेवर है, ब्लूबेरी है तो ब्लूबेरी कंपोट आता है, चॉकलेट का बता दिया मैंने, फिर आपका वनीला में तो नॉर्मल व्हिप क्रीम और स्पॉन्ज का केक हो गया। तो ऐसे आपका वेरिएशन होता है इसमें।
1: और आजकल देखते हैं कि बहुत से घर में महिलाएं जो बच्चे हैं खासतौर से नेट में यूट्यूब के माध्यम से निकाल लेती हैं केक कैसे बनाए और उससे भी देख देख के मतलब ठीक ठाक खाने लायक वो बना ही लेती हैं। ये भी एक
0: ये है मतलब यूट्यूब पर है बहुत सारे वीडियोस, बट जो एक बेसिक होता है वो आपको एक टीचर ही सिखा सकते हैं। क्योंकि वो वीडियोस में नहीं होते।
1: तो आपने तो कहीं ट्रेनिंग लिया नहीं था, आपने तो सीधे स्वतः ही शुरुआत किया इसका
0: एक्सपीरियंस से। शुरू के केक्स बहुत मेरे वैसे ही थे कि हाँ घर वाले केक्स है, फिर धीरे धीरे धीरे करते करते फिर आपका एक्सपीरियंस भी होता है, आपका हाथ भी बैठता है, आपको समझ आता है कि आपको कैसे क्रीम को हैंडल करना है, कैसे स्पॉन्ज को हैंडल करना है।
1: सृष्टि जी, आमतौर पर हमारे युवा जो सुन रहे हैं और ये व्यवसाय काफी बेहतर है, घर से कहीं दुकान भी आप नहीं ले रहे हैं, घर से ही इसे अब किया जा सकता है, तो आमतौर पर उन्हें कहीं प्रशिक्षण लेना चाहिए इसका? तो आसपास कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाती हो, तो उसके बारे में बताएं।
0: झारखंड में तो एकदम आइडिया नहीं हमको, बट दिल्ली वगैरह में हो सकता है।
1: बड़े-बड़े सिटीज में तो हैं।
0: ऐसे तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बेकरी में डिप्लोमा भी होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: और मतलब जैसे आपका बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव में है इनके इंस्टीट्यूट्स, बट अगर आपको कुछ बेसिक सीखना है तो इसका मतलब झारखंड में आइडिया नहीं है हमको बहुत।
1: मेरे ख्याल से होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स आप करते हैं तो उसका भी क्षेत्र होता है, अगर बेकरी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है, मतलब होटल मैनेजमेंट करने से भी काम चल सकता है, तो उसमें भी
0: कर सकते हैं, बट वो मतलब आपका एकदम फोकस नहीं होता है। होटल मैनेजमेंट में आपका चार डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन और आपका एक और F&B हो गया, फूड एंड बेवरेजेस। तो आपको चार डिपार्टमेंट होता है, आप जब फाइनल ईयर में होते हैं तो आप एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट खुद से चूज करते हैं, फिर आप कैंपस में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बैठते हैं।
1: तो मेरे ख्याल से वहाँ भी एक स्कोप है कि आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप घर में तैयारी करें इसके। आमतौर पर एक व्यवसाय के रूप में अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम कितनी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है आपके अनुसार?
0: 50,000 से भी लोग शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है, बट बेकरी का
1: अगर छोटे मोटे हल्के में करना है तो 10-20,000 से भी शुरुआत हो सकती है, 2-4 अगर बनाना है तो।
0: हाँ, बट अब हमको लगता है कि लोगों को कोर्सेस करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं है कि हाँ व्हिप क्रीम फेटा, आपने स्पॉन्ज बनाया और केक बनाया, आपको साइंस पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं और क्या मतलब आप मार्केट में क्या निकाल रहे हैं, अगर आप कौन सा मैदा यूज कर रहे हो, वो क्या मैदा, मैदा में भी बहुत वेरिएशंस होता है, चॉकलेट में भी बहुत वेरिएशन होता है, आपको नॉलेज होना इसका जरूरी है। कोर्स करना चाहिए आई गेस सबको, अगर उनको आइडिया होना चाहिए। अब
1: अच्छा, अभी तक आपने जितने भी सामान वगैरह जो आपने कहा ये सारे लेकर के आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की है अभी तक, आपने कितना पैसा लगाया हुआ है?
0: हाँ, अप्रोक्स 80-1 तक गए
1: है ना, एक तक कर लिया। अभी बताइए कि कुल मिला जुला कर महीने में आपकी इनकम कितनी आ जाती है?
0: ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जैसे सीजन ऑफ है तो वो आपका डिपेंड करता है कि अभी कितना जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही जाना है,
1: लेकिन फिर भी एक मिनिमम
0: कभी काउंट नहीं करा मैंने
1: फिर भी हमारे श्रोताओं को बताया कि अनुमानता आप अभी कितना कमा लेती?
0: अभी अगर ऑफ सीजन है तो फिर आपका 25 हो गया या फिर आपका 50 चला गया, 60 चला गया सीजन के हिसाब से।
1: अच्छा, सीजन के हिसाब से। ऑफ सीजन मतलब 15-20,000 रुपया में कमी नहीं है, उतना आपको आ जाता है ना। अभी बताइए मिनिमम केक आप कितने का, मतलब आपके यहाँ कितना से शुरू होता है? श्रोता अगर सुन रहे हो तो
0: हम लोग का क्वालिटी, हाँ, मतलब हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं।
1: एक पाउंड का कितना कीमत
0: रखते हैं? 3.5 से शुरू है।
1: अच्छा।
0: और 1100 तक गए।
1: तो इस एरिया, ये तो अच्छे एरिया में आप हैं, तो यहाँ पर कितने का ऑर्डर आपको मिलता है, कितना बड़ा केक का
0: आ जाता है? आपका एंगेजमेंट केक आ गया, कभी
1: एंगेजमेंट में तो 1000 से कम मिलेगा ना। अब बाकी बर्थडे केक है तो शॉर्टकट में गार्जियन चाहते हैं कि आजकल निकालना है, तो वही 300-350 मैक्सिमम।
0: मतलब आप जैसे हम लोग केजीज में डील करते हैं, हाफ के जी, 1 केजी, हम लोग 1 पाउंड 2 पाउंड नहीं डील करते हैं, क्योंकि हम लोग का केक बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है साइज में। और मतलब वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के यहाँ कितने लोग आने वाले हैं, उनको कितना बड़ा केक चाहिए, उस हिसाब से वो हमको, जैसे अगर बताएंगे कि हाँ 10 लोग आएंगे तो हम उनको बोलेंगे कि हाँ आपका 1 पाउंड में हो जाएगा या 2 पाउंड में हो जाएगा।
1: अच्छा। तो मतलब इस व्यवसाय से आप खुश हैं और आगे भी पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं?
0: अभी तो फिलहाल व्यवसाय से ही खुश हूँ।
1: तो चलिए ठीक है, अपने घर में रह करके और अपने गाँव घर में रह के हजारीबाग में रह करके आप इतना अच्छा व्यवसाय कर रही हैं, लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है, आप 4 पैसे कमा रही हैं और लोगों के लिए एक आइकॉन हैं, आप लोग काफ़ी आपको पसंद भी करते हैं, चाहते भी, आपके फॉलोअर्स भी हैं, तो शुभकामनाओं के साथ चलते चलते एक बार जवाब कि नए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे, अगर बेकरी व्यवसाय के क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, खासतौर से केक बनाना चाहती हैं या चाहते हैं कोई भी हमारे श्रोता, तो उनके लिए क्या संदेश है?
0: देखिए बेकरी बहुत फैसिनेटिंग लगता है दूर से देखने में कि हाँ कितना सुंदर है, कितना हैपनिंग है, बट इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है।
1: कंपटीशन है, मेहनत भी है,
0: आप जहाँ
1: टेस्टिंग भी आपका होना चाहिए।
0: हाँ, आप अब किसी कस्टमर को चाहिए कि नहीं हमको बस सस्ते में 150 रुपए का केक चाहिए, ठीक है, तो आपके पास नहीं आएंगे, बट आपको उनको बिलीव कराना है कि नहीं आप क्वालिटी बेच रहे हैं, इसलिए हम 300 रुपए में ये केक निकाल रहे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी, हमारा टेस्ट है। तो आपको वो चीज़ भी, मतलब ये बहुत बड़ा कंपटीशन है अपने आप में ही, कस्टमर को कन्वेंस करना कि आप उनको क्या सर्व कर रहे हैं। और अभी मतलब जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ के या बाहर से लोग रहे हैं या बाहर जाते हैं, तो उनको आइडिया होता है, जो यहाँ पे है नहीं रहे, मतलब यहीं पर हमेशा से रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा है कि उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, या तो आप क्वालिटी निकाल सकते हैं या तो आप क्वान्टिटी निकाल सकते हैं, दोनों हमेशा अपोजिट ही रहेगा। अगर आप क्वांटिटी निकालना है आपको ज्यादा सस्ते में, तो आप क्वालिटी कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चीजों के दाम अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, कुछ का किसी चीज का भी दाम नहीं बढ़ रहा है। तो आपको मार्केट में मेंटेन करने के लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करना होगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या लोग देखता है और क्या लोग ढूंढ रहे हैं। तो आपको हमेशा मतलब ट्रेंड के साथ भी चलते रहना पड़ता है कि कभी पिनाटा आया, कभी सरप्राइज बॉक्स, कभी कुलमे अब केक्स आया, तो आपको उस हिसाब से भी चलना पड़ता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि कमल जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और श्रोताओं के लिए अच्छी जानकारी दी कि एक व्यवसाय के रूप में इसे किया जा सकता है और थोड़ी सी तन्मयता के साथ में और तैयारी के साथ में, और अगर कहीं से सीख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी बातचीत से ही पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि कमल से अशोक कुमार की बातचीत आप सुन रहे थे कि केक मेकिंग रोजगार का एक बढ़िया जरिया विषय पर, और निश्चित रूप से हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जो केक का व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी लाभप्रद बातचीत रही। हम उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा भी उन्हें आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा अगर वो इस दिशा में सोच रहे हैं। और तो किसी भी व्यापार व्यवसाय के साथ जब बात होती है तो एक बात तो हमेशा स्मरण में रखने की ज़रूरत है कि उस क्षेत्र की जो प्रतिस्पर्धा है उसको अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं, और जो उसका जो सकारात्मक पक्ष है उसे तो नज़र में रखते ही हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा वाला पक्ष हमेशा छूट सा जाता है। तो जब भी कोई कार्य व्यापार शुरू करें तो इन सब चीज़ों का अध्ययन, इन सब बातों पर विचार ज़रूर कर लें, और तब जाकर एक बेहतर रोजगार आप खड़ा कर पाएंगे। आज के इस बातचीत में इतना ही। रेडियो के अपने साथी सूरज को इस वादे के साथ विदा दीजिए कि फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम मेहनतकश एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं जी पेश है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं भींगी पल के फिल्म का ये गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल को सुन रहे थे आशिकी फिल्म में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म बाहर आने तक से।

श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल

0: तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार थोड़ी।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। केंद्र से वार्ता के बाद सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा की। राज्य के सभी जिलों को 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फेज का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर दिया जोर। राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में शामिल हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार। पैक्स के कंप्यूटरीकरण समेत 15 एजेंडों पर हुई चर्चा। और रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में निकली घुरती रथ यात्रा। मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की बातचीत की। श्री नड्डा ने बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर चर्चा की गई।
1: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने जंतर मंतर से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की और उम्मीद जताई कि तय शर्तों को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
3: वंशवाद, जातिवाद, भारत माता के टुकड़े, गैंग, वामपंथी, आप जैसी पार्टियां आज छात्रों के नाम पर छाती पीट रहे, जिस तरह हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांग रहे हैं, तो झारखंड में जो इतने पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाला हुए, कांग्रेस जवाब दे, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार आपकी है, यहाँ क्यों किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा?
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फेज का कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मतदाता सूची में दर्ज झारखंड के मतदाता 5 अगस्त के बाद फॉर्म 8 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जल्द बीएलओ को जमा करने की अपील की ताकि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो सके। रांची जिले में आरटीई अधिनियम 2

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सावन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और सुगम जलार्पण व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। मंत्री ने यात्री सुविधाओं, यातायात और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।
1: जो गलतियां थी उनसे सबक लेते हुए इस बार और व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास है। उसी क्रम में हम लोग निरीक्षण के लिए घूम रहे हैं। तैयारियों की स्थिति यह है कि 90-95% काम हो चुका है, 4 दिन अभी बचे हैं और 100% काम हो चुके होंगे और उस समय तैयारियां हो चुकी होंगी।
0: राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य सहकारी विकास समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से जुड़े 15 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई। इस दौरान पैक्स के कंप्यूटरीकरण, विकेंद्रीकरण, अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट, दूध और मत्स्य उत्पादक समितियों के गठन तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकार से समृद्धि पहल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रम के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बता दें कि रांची के 11 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होने वाली है। जामताड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज व्यवहार न्यायालय सभागार में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों के अधिकार, पोक्सो अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
2: और जब हम पॉक्सो की बात करते हैं तो कहीं कहीं ये भी 15 से रिलेटेड है, इसलिए हमको आज बच्चों के प्रति ज्यादा सेंसिटाइज होने की जरूरत है। बच्चों के प्रति जो प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है केसेस की, हमको एक्स्ट्रा ज्यादा जेंडर फ्रेंडली होना है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर हम देखें तो फर्स्ट कोर्ट हमारी क्या, या फर्स्ट अगर कोई सामने आता है तो पुलिस आती, तो पुलिस को ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत है।
0: रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज घुरते रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर में विराजमान हो गए। इस दौरान रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। देर शाम तक मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। राजधानी रांची में मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में कल से डोरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। पहला मुकाबला जमशेदपुर FC और श्रीलंका के डिफेंडर्स FC के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर रांची के लोगों में उत्साह का माहौल है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। केंद्र से वार्ता के बाद CJP के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा की। राज्य के सभी जिलों को 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फेज का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों का लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर दिया जोर। राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में शामिल हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार। पैक्स के कंप्यूटरीकरण समेत 15 एजेंडों पर हुई चर्चा। और रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में निकली घुरती रथ यात्रा, मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में वर्षा ऋतु शुरू होते ही विभिन्न सरकारी और समाज सेवी संगठनों द्वारा चारों ओर पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले दिन सीआरपीएफ 172 बटालियन द्वारा बूढ़ा पहाड़ के आसपास के गांव में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया, साथ ही ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर प्रतिक्रिया देते हुए सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट अजय वर्मा ने कहा कि
2: विकास की जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का हो रहा है। जो हमारी प्राकृतिक वातावरण है वो नष्ट होता जा रहा है, और उससे क्या हुआ है, जंगली जानवर कम हो रहे हैं, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई, पक्षी खत्म हो गए, नदी नाले सूख रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी ऐसे किसी अभियान में जुड़ने का मौका मिले, चाहे एक ही पौधा लगाइए जरूर।
1: फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन गढ़वा के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय स्थित इंडोर स्टेडियम में स्कूल फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया है। इसमें एक दर्जन से अधिक जिला की टीमें भाग ले रही हैं। इसकी जानकारी देते हुए जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि
3: ये टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट है ग्रास रूट लेवल से बच्चों को उठाना, जिसके लिए इनको टूर्नामेंट मिलेगा तभी ये परफॉर्म करेंगे, और इतना अच्छा हमारे पास मैदान होने के बावजूद ये बच्चे कभी खेल नहीं पाते थे, इसलिए ये टूर्नामेंट किया गया और इसको लंबा ड्यूरेशन का इसलिए रखा गया ताकि बच्चों को नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा मिले, एक्सपीरियंस हो, टेक्निक सीखे, टेक्टिक्स सीखे और ट्रेनिंग लें और बेहतर से बेहतर कर सके, और यहाँ से गढ़वा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे राज्य में जाएं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे।
1: भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले दिन जेपीएससी में कथित अनियमितता के खिलाफ जिला मुख्यालय गढ़वा में एक मशाल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि
4: देखिए जेपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला, यहाँ के राज्य सरकार के मिली भगत से राज्य सरकार अपना पर्सनल कोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अरबों रुपया का वारा न्यारा हेमंत सरकार द्वारा किया गया। जिस एजेंसी को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जिम्मा मिला था हरियाणा की कंपनी को मिला था, और आपको पता है 600 नौजवान हरियाणा के लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो गए। आज यहाँ के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, नौजवती बच्चियां हैं, आज बेचारे बेरोजगार हैं, आज बेचारे असहज और असहाय महसूस कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का इस राज्य में और कोई जरूरत नहीं रह गया। आज हम लोग देखिए यहाँ पर मशाल जुलूस के माध्यम से प्रतीकात्मक हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे राज्य में ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और आने वाला समय आप आने दीजिए, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, नौजवान सड़क पर उतरा है।
1: जिले में जुलाई महीने में औसत से काफी कम बारिश हुई है, बावजूद इसके चारों ओर भदई और खरीफ दोनों ही फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। भदई में विशेष रूप से मकई, तिल, उड़द आदि की बुआई समाप्त हो चुकी है, वहीं धान के बिचड़े की भी बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बरसात में और सुधार होगा और उनकी भदई और खरीफ दोनों ही फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप हो सकेगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
0: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

तीसरी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे बी ब्राक को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में। फिल्म है अक्टूबर।

अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह के गाए इस गाने के साथ ही जानकार का आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है मोहरा और इस खूबसूरत गीत को आवाज दी है पंकज उदास और साधना सरगम ने।

0: हिना फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, तो आइए सुनते हैं ये गीत। श्रोताओं, फिल्म है अलग अलग।
1: कुछ तुमको

0: अलग अलग फिल्म के इसी गाने के साथ ही ऑल टाइम हिट्स का आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है प्रोग्राम नौचेतना। करियर आधारित इस पत्रिका में आज है संकलन और वाचन है अशोक कुमार का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नवचेतना।
1: कार्यक्रम नवचेतना सुन रहे आज के इस अंक के साथ मैं अशोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए अशोक की ओर से। नमस्कार श्रोताओं, इस बीच झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में और खासतौर से हजारीबाग की बात की जाए तो अच्छी बारिश हुई है और जिससे किसानों में ये संकट गहरा रहा था कुछ समय पूर्व, इस बार धान के फसल में

इत्र धान की फसल नहीं होगी, तो यह फिलहाल खतरा टल गया है और अच्छी फसल होगी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अच्छी बारिश से जहां एक और किसानों में खुशहाल का माहौल है, वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले आसपास के क्षेत्रों में, मोहल्लों में, कस्बों में और सड़कों पर अत्यधिक जल जमाव से परेशानियां भी उत्पन्न हुई है। और इसके लिए जमीनी स्तर पर हमें खुद जो है सो संकल्प लेकर काम करनी होगी और ये जल जमाव क्यों हो रहा है इस पर गहनता से विचार करके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके इसका समाधान ढूंढना होगा। श्रोताओं, आज के इस अंक में प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय का क्या महत्व है और इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, इस विषय पर साक्षात्कार लिया है पीएम श्री के भी स्कूल के शिक्षक हैं नुमान मंचर जी, उनका इंटरव्यू हम आपको सुनवाएंगे और इन सब के अलावे करंट अफेयर्स एवं नियुक्तियां पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप जो है सो 24 घंटे में 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करें, आप 4 से 6 घंटे ही पढ़ाई करें, लेकिन गहनता से करें और थोड़ी अध्ययन करें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे के भी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें और तभी जो है सो सफलता आपके हाथ आएगी। एक खूबसूरत सा गीत पेश कर रहे हैं।

0: खूबसूरत से गीत के बाद श्रोताओं, चलिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अंग्रेजी विषय की तैयारी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कैसे की जाए, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं पीएम श्री केवी उच्च विद्यालय के शिक्षक नुमान मंजर उर्फ मानसर। आज के इस कार्यक्रम में हम अंग्रेजी विषय की चर्चा करेंगे, मगर बेस होगा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बाद, चूंकि 10th और 12th के बाद बच्चे जो है नौकरी की ओर भागते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गया या फिर सरकारी सेक्टर हो गया, तो वो जहाँ भी जाए अंग्रेजी विषय की अपनी एक अनिवार्यता है।
1: जैसे दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी के पेपर होते हैं, लेकिन जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एसएससी के एक दिन के एग्जामिनेशन हो गए, वन डे जितने भी एग्जामिनेशन एसएससी या जेएसएससी कंडक्ट करवाती है, उसमें अंग्रेजी का एक पेपर हो, और वहाँ पर अंग्रेजी का एक डीप नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके पास हो। और इसके अलावा जो एयरफोर्स के एग्जामिनेशन होते हैं और नेशनल लेवल पर बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें कि अंग्रेजी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप दूसरे स्टेट्स में जब जाएंगे तो अंग्रेजी का एक पेपर होना कंपलसरी होता है। जैसे यहाँ पर आप खोरठा एक पेपर हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: ठीक उस तरह से आप अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे, अगर वहाँ का लैंग्वेज आप नहीं जानते तो आप साउथ में तो आपके लिए एकदम
0: इंग्लिश मस्ट,
1: एकदम मस्ट हो जाता है, आप उसके बगैर चल नहीं सकते। प्राइवेट जॉब हो या फिर आप कोई काम करने के लिए ऐसे गए हो, घूमने के लिए भी गए, तो अंग्रेजी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहाँ के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में रेलवेज हो गए सभी में,
0: रेलवे बैंकिंग,
1: तो उन सभी एग्जामिनेशन में इंग्लिश एक पेपर कंपलसरी हो। जैसे अंग्रेजी में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको ये लगता है कि सिर्फ ग्रामर कर लिए तो वो कवर हो जाएगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट कवर हो जाएगा। जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा हो,
0: जी
1: दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि वो वेटेज जो होता है दो पार्ट में बटा होता है, 50% जो होता है वो ग्रामर बेस्ड होता है क्वेश्चन, और 50% होता है वो वर्ड पावर बेस्ड।

0: अब जैसे वर्ड पावर पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो वो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं उसको याद करना होगा, रिपीट करना होगा और अपना वर्ड पावर इम्प्रूव करना होगा। तो वर्ड्स में जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं
1: जी,
0: उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, कुछ इम्प्रूवमेंट के आजकल जो ट्रेंड चेंज किया हुआ है एग्जामिनेशन में, जैसे इम्प्रूवमेंट सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा दिया गया उसके जगह पर वो वर्ड नहीं हो करके दूसरा वर्ड होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे किसी ने कोई चोरी की तो डू थेफ्ट अगर लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस में वहाँ डू नहीं होगा
1: जी।
0: कोई भी नेगेटिव वर्क अगर हम करते हैं, क्राइम हो गया या कोई गलत काम करते हैं, तो वहां पर वर्ड डू नहीं, वहां कमिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो इम्प्रूवमेंट उस सेंटेंस में करना है वो ये है, डू थेफ्ट के जगह कमिट थेफ्ट, कमिट मर्डर, कमिट रॉबरी, जितने भी नेगेटिव्स हैं उसके लिए हम डू वर्ड नहीं यूज करेंगे
1: जी,
0: है ना, वहाँ कमिट वर्ड यूज करेंगे। ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो कभी कभार अगर वर्ड्स याद करते हैं तो सिर्फ रट लेना वो सही नहीं होता, उसका प्रॉपर यूज समझना होगा
1: जी।
0: और ग्रामर वो उस चीज में मदद करता है। तो 50% जैसे मैंने बताया कि idioms and phrases, words, synonyms, antonyms, ग्रामर का अपना एक अलग रोल है। तो ग्रामर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ कुछ ऊपर कुछ रूल्स, गोल्डन रूल्स और नेट पे बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें भी अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स वहां तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, तो वो जो गोल्डन रूल्स से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, आपको पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। नाउन अपने आप में एक जो चैप्टर है, जैसे जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें अगर नाउन पढ़ने के लिए जाए तो उसका अलग अलग हिस्सा है। जैसे नाउन एंड नंबर, ये एक अलग अपने आप में चैप्टर है। नाउन एंड जेंडर, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर हो गया। नाउन एंड केस, लेकिन ये इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे
1: जी।
0: और ग्रामर और वर्ड पावर, ये दोनों अगर स्टूडेंट्स का मजबूत होगा तो एक सेक्शन जो आता है एग्जामिनेशन में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया होता है, उससे क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, अगर हम अंग्रेजी का वर्ड पावर मेरा अच्छा है तो हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेंगे
1: जी।
0: तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए, और रैपिड फिलर जो होता है, क्लोज टेस्ट भी उसको कहते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए वर्ड पावर और ग्रामर दोनों का इक्वल कॉम्बिनेशन होता है। ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आप रैपिड फिलर, जिसको क्लोज टेस्ट भी कहते हैं, वो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, और कॉम्प्रिहेंशन भी वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बाकी सेपरेटली आपको दिया गया कॉमन एरर वो ग्रामर बेस्ड है पूरी तरह से
1: जी।
0: तो सिर्फ ग्रामर और सिर्फ वर्ड से आप 50% अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा अच्छा, तब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स और 50, 48, 49 तक स्कोर करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। और अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे एसएससी के मेंस में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आप पूरी तरीके से, कुछ सेक्शन है जिस पे ज्यादा फोकस करके आप बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। बहुत सबसे बड़ा चैप्टर अगर ग्रामर का कोई है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप उस पर कमांड करते हैं, तो जैसे जो स्पीकिंग करने के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो अगर वर्ब पे बहुत अच्छा कमांड हो गया तो स्पीकिंग में भी दिक्कत नहीं होती
1: जी।
0: लेकिन स्पीकिंग के लिए भी, जैसे बहुत सारे लोगों को शौक है कि हम बहुत अच्छे स्पीकर हों अंग्रेजी के, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वर्ड पावर, प्लस एक ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो वर्ब। इतना अगर अच्छा कमांड करेंगे तो अंग्रेजी बोलने में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई छोड़ नहीं सकते आप
1: जी।
0: जैसे अगर ग्रामर के लिए जो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे सुटेबल बुक है वो है आपका रेन मार्टिन का ग्रामर का बुक।
1: अच्छा,
0: वो सबसे बेहतरीन है, एकदम बेस अगर अच्छा
1: सब कुछ है उसमें,
0: एवरीथिंग। इंडिया में जितने भी ग्रामर की किताबें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसी से इंस्पायर्ड है।
1: अच्छा,
0: या बोल सकते हैं उसकी एक मॉडिफाइड कॉपी है। लेकिन अशोक कुमार सिंह की भी जो किताब आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, जैसे नेसफील्ड की किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो जो बेसिक ग्रामर जिसमें से पूरा डिटेल्स आपको चाहिए, देयर फ्यू अदर राइटर्स आल्सो, अभी रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी किताबें बड़ी अच्छी हैं। वैसे नेट पे भी मटेरियल्स बहुत अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है, लेकिन कुछ चीजें इनकम्प्लीट हैं और कंफ्यूजिंग है, तो वहां पर उनको किसी अच्छे टीचर से संपर्क करना चाहिए जो उनके कंफ्यूजन को दूर कर पाए
1: जी।

0: अगर कोई नए विद्यार्थी हैं तो वो टीचर्स उनके डाउट्स को क्लियर कर देंगे. जी दे शुड कॉन्टैक्ट द टीचर्स, इट विल बी बेटर फॉर देम. तो वो उनको फिर नेट से जो इन्फॉर्मेशन आता है वो कंफ्यूज्ड नहीं होंगे स्टूडेंट्स को. और बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर्स हैं, देयर बहुत कामयाब भी हैं वो बच्चे. लेकिन वहाँ कंसंट्रेशन, क्योंकि वो पैसिव क्लास होता है ना, वो स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट नहीं. लेकिन जो अभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करना चाहिए, वर्ड्स पे. जितना याद करेंगे उनको उतना फायदा होगा.
1: बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर. करंट अफेयर्स में सबसे पहले चर्चा करेंगे 2026 के फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जिसमें स्पेन ने शानदार विजय हासिल किया है. फाइनल मुकाबले में उसने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा कर यह खिताब दूसरी बार अपने नाम किया. प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वैरमुथु को देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय जीव ओलंपियाड 2026 दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-4 स्वर्ण पदक जीते हैं. और क्रिकेट की बात की जाए तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वैभव सूर्यवंशी के शानदार 50 रनों और मयंक यादव के घातक गेंदबाजी के बदौलत भारत ने पहले T20 मैच को 7 विकेट से जिम्बाब्वे को हराकर जीत लिया है. 135वें डूरंड कप 2026 के उद्घाटन समारोह तैयारी अंतिम चरण में है और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है. और हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट ने एरो स्पेस ने भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है. और SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2026 शुरू कर दी गई है. अब कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं. जुलाई 2026 में विभिन्न सरकारी विभागों जैसे रेलवे, बैंकिंग, IBPS, वायुसेना और राज्य कर्मचारी चयन आयोग में बम्पर नियुक्तियां निकाली है. 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें कई पदों के लिए अंतिम तिथि जुलाई के अंत तक आवेदन करने की है. बैंक ऑफ इंडिया BOI ने क्रेडिट ऑफिसर के लिए 700 से अधिक रिक्तियों पर आवेदन की प्रक्रिया चलाई जा रही. तो ये थी नियुक्तियों के बारे में जानकारी. अशुतोष, इसी जानकारी के साथ आज के नवचेतना के इस अंक से मुझे यानी अशोक को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ. श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नवचेतना. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन.
2: श्रोता भी सुन रहे थे कैरियर आधारित पत्रिका नवचेतना. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन. वाचन और संकलन था अशोक कुमार का. FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं. श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं. कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा.

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12:00 बजे तक स्थगित कर दी। 12:00 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद दो बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तिन्नेट्टी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तिन्नेट्टी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही

0: नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है फरमाइशें फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म है आंधी। और इस खूबसूरत से गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उन सभी के नाम हम आपको बारी बारी से बता दें। महादेव घाट अमलेश्वर के हमारे श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। सच्चिदानंद दुबे, नटवर निर्वोही, कुमार दिवाकर और सत्यम ये हमारे श्रोता है रातू रांची से। अमजद अली, अब्बास अली, आलम अली ये हमारे श्रोता हैं मगनपुर से। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें ये पत्र भेजा है हरदेव मीका, बलविंदर, बीरक, जयतंग और इनके दूसरे साथियों ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कुछ और श्रोताओं के नाम हम आपके साथ साझा कर दें। ये हमारे श्रोता हैं मेन रोड बड़का गांव हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू, भोला और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस खूबसूरत से गीत की हमसे फरमाइश की है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत का आनंद उठाएं।

0: बरसों बाद खरीदने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन

सीआईडी। जी हाँ श्रोताओं, यही है वो फिल्म जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में। और इस खूबसूरत से गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले उनके नाम हम आपको बारी बारी से बता दें। ये बेरडी के हमारे श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, पंचल, अर्जुन और धीरज सवासरे। इंद्रपुरी हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं अरविंद ठाकुर, दिलीप ठाकुर। साई मंदिर रोड इंद्रपुरी चौक के हमारे श्रोता है तिलक रॉय। कुमाटोली हजारीबाग से पत्र हमें भेजा है ब्रजलाल सोनी ने। जामाडोबा के हमारे श्रोता है मोहम्मद रफीक अंसारी, बेगम फरीदा रफीक। कलाम मोहम्मद आरजू, निरोभर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून, इरफान अहमद, शबाना परवीन, फिरोज अहमद, शमा परवीन और कमाल अहमद आरजू का। कुछ एक और श्रोता हैं जो इसी गीत की जिन्होंने हमें फरमाइश भेजी है उनके नाम भी हम आपको बता दें। ये आदर्श नगर मलोट से पत्र हमें भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। तो अपने इन सभी श्रोताओं के साथ आइए आनंद उठाते हैं इस खूबसूरत से गीत के।

हम आपको बता दें कि अपने ट्यून किया FM हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत। तो श्रोताओं आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अब हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है नया दौर, शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज में ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें, छेपा कला बड़का गांव के हमारे श्रोता हैं बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका दीपिका का। झुमरी तिलिया के हमारे श्रोता हैं विजय कुमार शर्मा।

गरबा मंच गावा हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं युगल प्रजापति दिवंती नीलेश कुमार अनशुप्रिया और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। राजेश चौहान, संदीप चौहान, किशोर चौहान, सचिन चौहान ये हमारे श्रोता हैं बनूसा दरियापुर महाराष्ट्र के मुंबई से। हमें कुछ श्रोताओं ने पत्र भेजे हैं, विमल गुप्ता और वंदना गुप्ता, शांति आश्रम रोड बड़का गांव रोड हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं मानस राज, मानसी राज, मिताली राज, प्रांजल राज, अर्पित राज और राजवीर राज, ये सभी हमारे श्रोता हैं शांति आश्रम बड़का गांव रोड हजारीबाग से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है आखिरी खत, लता मंगेशकर की आवाज में। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें। पत्रा 2000 के हमारे श्रोता हैं बेसिल खलखो, मधु रितु, रचना रितु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। और स्टेशन रोड झुमरी तिलिया के हमारे श्रोता हैं किशोर कुमार मगधिया और सुनीता देवी बंटी कुमारी। एकता कॉलोनी रोहतक के हमारे श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एसआर कांगड़ा का। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा, ये हमारे सभी श्रोता हैं भाटापारा दतरंगी छत्तीसगढ़ के। लक्ष्मणपुर के हमारे श्रोता हैं विश्वनाथ साहू, लेवई से ये पत्र हमें भेजा है गुलाबदास मानिकपुरी ने। तो आइए अपने सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है

गले लग जा, किशोर कुमार की आवाज में आई सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम हम आपको बताते। बड़ा बॉम्बो गांव सुपाई साई के हमारे श्रोता है देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, रेशमा, प्रीति कुमारी, निशा और देवेन, महेश राम, सरिता देवी, पिंटू, वर्षा, बरखा, सविता, गुड़िया, राज, रीता देवी, फुलवासी देवी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने यह पत्र हमें भेजा है पोचरा बरका काना से।

नवाटोला भीखनपुर भागलपुर के हमारे श्रोता हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास, नितिन और मनोज पासवान का, महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महमूद आलम, शहनाज नूरी, महफूज और शमशाद बेगम, ये सभी हमारे श्रोता हैं। सौदागर मोहल्ला रामगढ़ के रमेश कुमार जाजोरिया, गीता देवी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, ये इन्होंने हमें पत्र भेजा है पटेल नगर मलोट से। रेलवे स्टेशन हजारीबाग के पास ये पत्र हमें मिला है शमी अहमद, सगुप्ता, प्रवीण, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद और एहसान अहमद का। तो आइए कार्यक्रम के अंत में किशोर कुमार की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोता साथी, इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही परमेश्वर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है। सूरज को दीजिए मती, नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या, न्यूज एट 9, स्पॉटलाइट। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत

0: अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

0: आज के फनकार
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

एक ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: जिसको
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
2: कुछ समझ नहीं आ

तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है।

जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जी एस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जी एस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जी एस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जी एस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्ञान का लिखा हुआ है।

60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जो जीता वही सिकंदर फिल्म में उदित नारायण, साधना सरगम और जितिन ललित को कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में। तो फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म छोटी बहू से।

अजीज कुमार सानूवाल का याग्निक और सारिका को आप सुन रहे थे फिल्म एक रिश्ता में। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फकीरा फिल्म में महेंद्र कपूर को।

श्रोता भी सुन रहे थे रजनीगंधा एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं ने जो पेश है प्रोग्राम आज के फनकार, और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश के गाए कुछ गाने।

ईश्वर फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और नितिन मुकेश को। किंग अंकल फिल्म में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं आज के फनकार में नितिन मुकेश को। नितिन मुकेश 1980 से 90 के दशक में कई लोकप्रिय गीतों के गायक रहे हैं और कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है, जैसे खय्याम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पप्पी लहड़ी, राजेश रोशन, नदीम श्रवण, आनंद मिलन, एक लंबी फहरिस्त है इसकी। हम आपको बता दें कि नितिन मुकेश के पुत्र हैं, जाने माने पार्श्व गायक, और इन्होंने कई बेहतरीन और चुनिंदा फिल्में दी हैं। इसकी एक लंबी फहरिस्त है, राम लखन, आईना, किंग अंकल, कई फिल्में, कुछ और फिल्मों का जिक्र करेंगे। फिलहाल इस गीत का आनंद उठाइए।

श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही आज के फनकार का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे नितिन मुकेश के गाए कुछ गाने FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर

0: लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।